मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 14.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 14वीं तिथि, तदनुसार सन 18 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं से आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की।

0: प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए नीलम साहनी के स्वर में ये देशगान।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खरखर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब?
1: मतलब अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
0: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
1: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
3: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
0: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज में ये भक्ति गीत।

0: इसी गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख आचरण। संकलन और वाचन प्रियंका सिंह का है।
1: आचरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके शब्दों, ज्ञान, धन या बाहरी व्यक्तित्व से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और आचरण से होती है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही उसका आचरण बनता है, और जैसा उसका आचरण होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व समाज में स्थापित होता है। इसलिए कहा गया है कि आचरण ही मनुष्य का सच्चा परिचय है। आचरण का अर्थ है व्यक्ति का व्यवहार, उसकी आदतें, बोलचाल, दूसरों के प्रति उसका दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका। अच्छा आचरण

0: मनुष्य को सम्मान दिलाता है, जबकि बुरा आचरण उसे समाज में अकेला कर देता है। एक व्यक्ति चाहे कितना भी शिक्षित या संपन्न क्यों न हो, यदि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो लोग उससे दूरी बनाना पसंद करते हैं। दूसरी ओर साधारण व्यक्ति भी अपने अच्छे आचरण के कारण सबके प्रिय बन जाते हैं। मनुष्य के जीवन में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। बचपन में परिवार से मिले संस्कार ही आगे चलकर उसके आचरण का आधार बनते हैं। माता पिता बच्चों को सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की सहायता करना और विनम्र रहना सिखाते हैं। यही छोटे छोटे संस्कार व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं। जिस समाज में अच्छे संस्कार और अच्छा आचरण होता है, वहाँ शांति, प्रेम और आपसी सम्मान बना रहता है। अच्छा आचरण केवल दूसरों के प्रति विनम्रता दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ईमानदारी, सहनशीलता, अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे गुणों से भी जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है, समय का सम्मान करता है और दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है, वही वास्तव में अच्छे आचरण वाला कहलाता है। मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार से कठिन परिस्थितियों को भी सरल बनाया जा सकता है। आज के समय में विज्ञान और तकनीक ने जीवन को बहुत सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के व्यवहार में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग धैर्य और सहनशीलता खोते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, दूसरों की बात न सुनना और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना आज सामान्य होता जा रहा है। सोशल मीडिया के दौर में लोग शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। ऐसे समय में अच्छे आचरण की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। अच्छा आचरण केवल व्यक्ति को सम्मान ही नहीं दिलाता, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाता है। यदि परिवार में सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का व्यवहार करें तो घर में सुख और शांति बनी रहती है। विद्यालयों में विद्यार्थी यदि अनुशासन और विनम्रता का पालन करें तो शिक्षा का वातावरण बेहतर बनता है। इसी प्रकार समाज में यदि लोग ईमानदारी और सहयोग की भावना रखें तो समाज अधिक सुरक्षित और सुखी बन सकता है। हमारे महापुरुषों ने भी सदैव अच्छे आचरण का संदेश दिया है। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाया। भगवान बुद्ध ने करुणा और सहनशीलता का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इन महान व्यक्तियों का जीवन हमें यह सिखाता है कि अच्छे विचारों के साथ अच्छा आचरण भी आवश्यक है। अच्छा आचरण मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और दूसरों के मन में विश्वास पैदा करता है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, उसकी बातों का प्रभाव भी अधिक होता है। वही बुरा आचरण व्यक्ति की छवि को खराब कर देता है। कठोर वाणी, अहंकार, झूठ और स्वार्थ जैसे व्यवहार धीरे धीरे व्यक्ति को समाज से दूर कर देते हैं। आचरण का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि घर और समाज में अच्छा व्यवहार होगा तो बच्चे भी अच्छे संस्कार अपनाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार से दूसरों के लिए प्रेरणा बने। वास्तव में मनुष्य का आचरण ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार हमेशा लोगों के दिलों में सम्मान दिलाता है। इसलिए जीवन में सफलता और सुख प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान और योग्यता ही नहीं, बल्कि अच्छा आचरण भी आवश्यक है। यही कहा जा सकता है कि अच्छा आचरण जीवन को सुंदर, शांत और सफल बनाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार में विनम्रता, ईमानदारी, सहनशीलता और प्रेम को अपनाए तो परिवार, समाज और देश सभी अधिक सुखी और समृद्ध बन सकते हैं। वास्तव में अच्छे आचरण वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का गायन पाठ। गायन स्वर है रविंद्र साठे का। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन पाठ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब पेशे कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है गर्मी की जुताई से लाभ।
1: खेत की गहरी जुताई कृषि का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे ग्रीष्मकालीन जुताई भी कहा जाता है। किसान यदि कटाई के बाद गर्मियों में खेत की अच्छी जुताई करते हैं तो इससे मिट्टी, फसल और उत्पादन तीनों को लाभ मिलता है। गर्मी के समय तेज धूप पड़ती है, जब खेत की मिट्टी पलटकर ऊपर आती है तब सूर्य की गर्मी में छिपे कीट, रोगाणु और खरपतवार के बीजों को नष्ट करने में मदद मिलती है।

0: गहरी जुताई से मिट्टी में छिपे कीड़ों के अंडे, लार्वा, दीमक, फफूंद और रोगाणु धूप के संपर्क में आकर नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार के बीज मिट्टी के बाहर आ जाते हैं, तेज धूप में सूखकर नष्ट हो जाते हैं। इससे खेत साफ रहता है और फसल को पोषक तत्व अधिक मिलते हैं। जुताई से मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, जिससे हवा का संचार बढ़ता है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी पानी को अधिक मात्रा में सोखती है, बरसात का पानी खेत में रुकता है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है। जुताई से फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं, जो सड़कर जैविक खाद का रूप ले लेते हैं और खरीफ की फसल के लिए बेहद लाभदायक साबित होते हैं। इससे मिट्टी बेहद उपजाऊ बनती है। लगातार सिंचाई और खेती से मिट्टी की कठोर परत बन जाती है, किंतु गहरी जुताई इससे तोड़ती है, जिससे जड़ों का विकास भी बेहतर हो जाता है। गर्मी की जुताई से खेत समतल और साफ हो जाता है, जिससे बुआई आसानी से होती है और बीज का अंकुरण भी अच्छा होता है। मिट्टी अधिक गीली ना हो, दोपहर की तेज धूप वाले के समय जुताई अधिक लाभकारी होती है। मिट्टी पलटने वाले हल या रोटावेटर का उपयोग करना चाहिए, जिससे जुताई अच्छी हो और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। जुताई के बाद खेत कुछ दिनों तक खुला छोड़ देना चाहिए। दोबारा जुताई के लिए एक समय निर्धारित करनी चाहिए। गर्मी की जुताई विशेष रूप से धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। गर्मी में खेत की जुताई कम लागत वाला लेकिन अत्यंत लाभकारी कृषि कार्य होता है। इस समय किसान खेतों की जुताई करने में लगे भी हैं। इससे कीट नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी सुधार और जल संरक्षण जैसे अनेक फायदे मिलते हैं, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है और किसानों की आय में भी सुधार होता है। गर्मी में खेत की जुताई के लिए यंत्रों का भी उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। गर्मी की जुताई का मुख्य उद्देश्य मिट्टी को भुरभुरी बनाना, कीट रोग खरपतवार नष्ट करना, वर्षा जल संरक्षण करना होता है। इसके लिए सही कृषि यंत्र और सही समय बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मिट्टी पलटने वाले हल का उपयोग करना चाहिए, ताकि नीचे की मिट्टी की परत ऊपर आ जाए और ऊपरी परत नीचे चला जाए। कीट, अंडे और खरपतवार धूप में नष्ट हो जाएं। कठोर परत टूटनी चाहिए, ताकि खेत भुरभुरी हो और वर्षा जल को संरक्षित कर सके। गर्मी की पहली जुताई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है अप्रैल और मई माह की जुताई। डिस्क हैरो से मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है, खेत समतल बनता है, नमी संरक्षण में मदद मिलती है। एमबी प्लाउ से दूसरी बार जुताई काफ़ी उपयोगी मानी जाती है, इसलिए एमबी प्लाउ का भी उपयोग करना चाहिए। कल्टीवेटर का उपयोग करना चाहिए, ताकि हल्की और मध्यम जुताई के लिए इसे बेहद अच्छा माना जाता है और गहरी जुताई भी इससे होती है। खरपतवार नियंत्रण में कल्टीवेटर की जुताई बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कम खर्चे में अच्छी जुताई करती है और 2-3 बार अगर इसे चला दिया जाए तो मिट्टी पूरी तरह भुरभुरी हो जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोकसुर का प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित

प्रसारित करेंगे। कार्यक्रम परिक्रमा आप सुन सकेंगे आज सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। सुबह के 10 बजे आप सुनेंगे आपकी बात आपके गीत फोन इन कार्यक्रम। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे दिन के 11:05 पर। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 1:10 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

दोपहर 1:40 पर आप सुन सकेंगे। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज, गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत कंधा आप सुन सकेंगे आज दोपहर 2:30 पर। श्रोताओं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर आप पुनः सुन सकेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आज रात्रि 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकेंगे आज रात्रि 10:30 पर।

0: श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि

0: कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम् अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम् समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्रीमोदी आतंकवादम् आलोचयन् नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष

0: प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलं शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटिमितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटिमितानां विकासकार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तम्भौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए प्रभुनाथ वैष्णव और साथियों के स्वरों में ये छत्तीसगढ़िया गणेश वंदना।

इसी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल बस यहीं तक। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मेहदी हसन की आवाज में ये गजल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब पेश है जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: संपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका साथी अक्षय। स्वीकार कीजिए प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर कोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर कोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री ने किया शिव मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। राज्य सरकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, श्री राजेश अग्रवाल ने कहा। अंबिकापुर, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री ने अंबिकापुर स्थित नमना कला वार्ड क्रमांक 14 सरना में प्रस्तावित शिव मंदिर निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के बीच संपन्न हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि भगवान शिव भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं होते, बल्कि समाज को जोड़ने और संस्कारों को सहेजने का कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी रहें। उन्होंने कहा कि नमना कला क्षेत्र में शिव मंदिर निर्माण से श्रद्धालुओं को बेहतर धार्मिक वातावरण मिलेगा तथा क्षेत्र में आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों को नई दिशा प्राप्त होगी। मंत्री ने स्थानीय नागरिकों की सहभागिता और धार्मिक स्थान की सहायता करते हुए कहा कि जन सहयोग से ऐसे निर्माण कार्य समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जयकारों के साथ मंदिर निर्माण के कार्य शुभारंभ का स्वागत किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर अंबिकापुर नगर पालिका निगम की महापौर सहित क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। समाचार यूं ही जारी रहेंगे, पर उससे पहले सुनिए फिल्म जूली का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है राजेश रोशन का।

0: अरे ही, ये खर खर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब
1: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
0: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
1: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
3: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ
4: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
5: श्रोताओं, अब बढ़ते हैं आज के अगले समाचार की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन मई जून 2026, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में निर्वाचन तैयारियां तेज। रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति। जिला MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन मई जून 2026 के सफल, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन संबंधी समस्त कृत्यों के निर्वहन के लिए संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत कुल एक सरपंच एवं दो पंच पदों के लिए निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत सोनहरी में सरपंच पद हेतु तथा ग्राम पंचायत बेलबहरा एवं चनवारी डांड में पंच हेतु निर्वाचन होगा। वहीं जनपद पंचायत भरतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जुइली एवं नेरुआ में दो पंच पदों के लिए उप निर्वाचन आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय अवधि में संबंधित निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन प्रस्तुत करना होगा। जिला प्रशासन ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं एवं संभावित अभ्यर्थियों से निर्वाचन कार्यक्रम की समय सीमा का पालन करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले सुनिए फिल्म प्रेम रोग का ये गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अब इस गीत के बाद बढ़ते हैं समाचारों में आगे। बैकुंठपुर में 19 मई को लगेगा रोजगार मेला। 297 पदों पर होगी भर्ती। निजी कंपनियों में रोजगार पाने का मिलेगा अवसर। जिला कोरिया रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बैकुंठपुर कोरिया द्वारा 19 मई 2026 मंगलवार को एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले का आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कलेक्टोरेट परिसर जिला पंचायत के पीछे गढ़केलेवा के बगल बैकुंठपुर में किया जाएगा। रोजगार मेले में विभिन्न निजी कंपनियां शामिल होकर युवाओं का चयन करेंगी। इसमें कुल 297 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए 10वीं 12वीं ITI कंप्यूटर डिप्लोमा एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। रोजगार मेले में प्रमुख रूप से परिश्रम ह्यूमन रिसोर्स एक्टिवर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा JR ग्रुप मैन पावर एंड सिक्योरिटी जैसी निजी कंपनियां भाग लेंगी। इन कंपनियों द्वारा मीटर इंस्टॉलर CRO डाटा मैनेजर लाइफ मित्र सिक्योरिटी गार्ड कंप्यूटर ऑपरेटर कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर बैंक एवं फाइनेंस ऑफिसर तथा फील्ड ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत मुकेश की आवाजों में। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा बस यहीं तक।
1: संपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
5: मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
6: यात्रा के दौरान

0: दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ M. पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया,

0: जबकि दो राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं।
2: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा कर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन।

0: को रोकना मंजूर नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ। नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा। अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्यबल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वी डी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
3: Central to the visit was the adoption of a joint action plan, which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की त्रिवेणी आकाशवाणी ने दशकों की इस यात्रा में तमाम मील के पत्थर स्थापित किए हैं और अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने कार्यक्रमों में पिरोते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया है। जन जन की वाणी बन मूक को वाचाल बनाने का प्रयास आकाशवाणी ने किया है। आकाशवाणी ग्रंथालय में संग्रहित छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर केंद्रित इस कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के माध्यम से

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं। साथ ही आकाशवाणी की इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों से भी परिचित कराने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है हमारे सुधी श्रोताओं के लिए ये प्रयास उपयोगी सिद्ध होंगे। आज के अंक में हम छत्तीसगढ़ के विविध गीतों की चर्चा करेंगे और साथ ही सुनवाएंगे कुछ सरगुजिहा गीत। इससे पहले आइए आकाशवाणी की इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हैं। प्रसारण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उद्घोषक पर। किसी भी प्रसारण केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को सुनने के लिए श्रोता जब रेडियो ऑन करते हैं तो आकाशवाणी संकेत धुन के बाद केंद्र की आरंभिक परिचयात्मक उद्घोषणा सुनाई देती है। फिर जो भी कार्यक्रम उस प्रसारण सभा में निर्धारित होते हैं वे कार्यक्रम बारी बारी से श्रोताओं तक पहुंचने लगते हैं। एक कार्यक्रम के समाप्त होते ही दूसरे की उद्घोषणा, फिर अगले कार्यक्रम की। ये उद्घोषणाएं प्रसारण को एक आकार देती हैं, उसे व्यवस्थित करती चलती हैं, उसे निखारती हैं। किसी भी केंद्र का श्रोताओं से जीवंत परिचय उद्घोषक की उद्घोषणाओं के माध्यम से ही होता है। केंद्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम निर्माताओं, प्रसारणकर्ताओं के अतिरिक्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है उद्घोषक की। प्रसारण सभा चाहे एक या दो घंटे की हो या उससे अधिक की, उसमें उद्घोषणाएं जितनी जीवंत, सारगर्भित और ऊर्जावान होंगी, प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम श्रोताओं को उतने ही रुचिकर लगेंगे। इतना ही नहीं, उस जीवंत उद्घोषणाओं से श्रोताओं में उत्साह और उमंग का संचार होते रहता है। लेकिन यदि उद्घोषणाएं नीरस, बुझी बुझी सी, काम चलाऊ और खाना पूर्ति वाली होंगी तो ऐसे में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम चाहे कितने भी अच्छे और रोचक हों, श्रोताओं को प्रभावित करने में असफल रह जाएंगे। इसलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रसारण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उद्घोषक। वो कार्यक्रमों और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। जीवंत और प्रभावी उद्घोषणाओं के लिए एक उद्घोषक में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। संप्रेषण हुनर, संप्रेषण कौशल या कम्युनिकेशन स्किल, जो भी कहा जाए, एक उद्घोषक की पहली शर्त है। उद्घोषणाएं जो भी हों, उसमें विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। आवाज अच्छी तो हो ही, उस आवाज का सही प्रयोग और साफ होना भी उतना ही जरूरी है। उच्चारण में शुद्धता और स्पष्टता हो। उद्घोषक बहुआयामी भूमिका में होता है। विभिन्न विधाओं की प्रस्तुति में उसकी संबद्धता होती है, जैसे भेंटवार्ता, विवरण प्रस्तुतकर्ता और अन्य प्रसारण रूपों में भी उसे प्रतिभागिता करनी होती है, तो उनके लिए भी उसे अपने आप को तैयार करना होता है और ये तैयारी निरंतर अध्ययन और समसामयिक घटनाक्रमों की जानकारी रखने से बेहतर हो सकती है। उद्घोषक रेडियो का संपूर्ण प्रस्तुतकर्ता होता है, इसलिए उससे अतिरिक्त सजगता की अपेक्षा की जाती है। जितनी प्रभावपूर्ण उद्घोषणा होगी उतना ही प्रभाव श्रोता पर पड़ेगा। वास्तव में उद्घोषक पूरे कार्यक्रम का अहम सूत्रधार होता है, इसलिए उनसे उनकी भाषा में सरलता, सहजता, स्पष्टता, बोधगम्यता होने की अपेक्षा की जाती है। आइए अब आपको छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को समर्पित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर से जोड़ते हैं।

साहित्य की अत्यंत सूक्ष्म कमनीय एवं प्राणवंत विधा है गीत। गीतों का जन्म किसी अज्ञात कवि के मुख से लोक जीवन में हुआ। यही कारण है कि लोकगीत लोक जीवन का श्रृंगार ही नहीं उसकी आत्मा भी है। लोकगीतों में वस्तुतः कवि की नहीं वरन जन समाज की वाणी मुखरित होती है। ये लोकगीत हमारे खेतिहर समाज की जीवन पद्धति और संस्कृति का दर्पण है। सदियों से प्रचलित लोकगीत वाचिक परंपरा का ऐसा प्रवाह है जिसमें उसके अंतर्मन की व्यथा कथा अच्छा लगती है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। लोक का भावुक और निर्लिप्त मन जन्म से मृत्यु तक लोकगीतों का संबल ढूंढता है। लोक जीवन के सुख दुख उल्लास हर्ष विषाद और संघर्ष को अभिव्यक्त करते हुए लोग

गीत कोटि कोटि हृदयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पनिहारिन और बोझा ढोती हुई स्त्रियों के साथ साथ घर में चक्की पीसती हुई महिलाओं के सुरीले कंठों में रचे बसे लोकगीत जन जीवन में इतने गहरे बैठे हुए हैं कि जन जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं।

लोकगीतों की गंगोत्री आदिम युग से निरंतर गतिमान है। मानव जाति के उत्थान पतन की गाथा गाते हुए इन गीतों में व्यक्ति अपने उल्लास और आक्रोश के साथ साथ मन में दबी इच्छा को सबके सामने रखता है। ग्रामीण जनजीवन में ही नहीं, गांव के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में भी ये लोकगीत रचे बसे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी सत्ता का ज्ञान लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। छत्तीसगढ़ी एक सरस, सरल और लचीली भाषा है, जिसमें सौहार्द, सामंजस्य और प्रेम के घुंघरू बजते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की समृद्ध परंपरा लोकमानस के कंठ कंठ में समाई है। छत्तीसगढ़ का ददरिया

असंख्य नारियों के हृदय की झंकार का ये ताना बाना करुण, हास्य और श्रृंगार रस से लिपटकर सुरीले कंठों में गूंजता है। सुआ, भोजली, ददरिया, कर्मा आदि गीतों में उनके प्राणों की वेदना फूंकती है। इन गीतों में भावनाओं का वेग इतना अधिक प्रबल होता है कि हृदय द्रवीभूत हो उठता है। बड़ी से बड़ी बात का उलाहना देने और नाराजगी जाहिर करने में लोकगीतों ने नारी जाति की बड़ी मदद की है। हृदय में लगी ठेस, दुख और पीड़ा को जिन्हें कई कारणों से जबान पर नहीं लाया जा सकता, उन्हें गीतों की लड़ियों में पिरोकर डंके की चोट पर समाज को सुना दिया जाना लोकगीतों का ही कमाल है।

आइए अब चलते हैं सरगुजा की सुरम्य वादियों में, जहाँ के लोक जीवन में लोकगीतों में श्रृंगार के सहज ही दर्शन होते हैं। मानव की श्रृंगारिक प्रवृत्ति सहजात है, वह अनादिकाल से अपने शरीर को आकर्षक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। श्रृंगार प्रसाधन की ये प्रवृत्ति आज भी लोक जीवन में विद्यमान है। लोक जीवन में केवल नारी ही नहीं बल्कि पुरुष वर्ग भी नृत्य उत्सवों के अवसर पर प्राकृतिक उपादानों से अपने शरीर को सुसज्जित करते रहता है। ऐसे उपादानों में नृत्यरत होने के अवसर पर पगड़ी में पुष्पित टहनी खोसना, कौड़ियों का झालर कमर में बांधना, कमर में मयूर पंख बांधना आदि सम्मिलित है। सरगुजिया लोकगीतों में नारी सौंदर्य प्रसाधन के अनेक मनभावन चित्र अंकित हैं।

और अब आज के अंक को यही विराम देते हैं। वाचन तारकेश्वरी आसुदानी का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजक पंकज मेश्राम। विदा दीजिए, नमस्कार।

0: छत्तीसगढ़ के
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। वाचन और प्रस्तुति सहयोग अंजनी कुमार पांडे का है। प्रस्तुत करता है प्रमेंद्र कुमार।

0: स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग और विविधा के विविध रंगों से सजी परिक्रमा की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी। आज के अंक में जयंती पर याद किए गए मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो रेहाना फाउंडेशन का था आयोजन। संपन्न हुई भारत माता की आरती सनातन प्रवाह का था आयोजन। संभाग स्तरीय कवि सम्मेलन में कवियों ने किया देशभक्तिपूर्ण रचनाओं का पाठ। और आज की विविधा में सुने बढ़ते तापमान और बदलते मौसम में कैसे रहें स्वस्थ, विषय पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता से अंजनी कुमार पांडे की बातचीत। श्रोताओं, प्रसिद्ध लेखक और कहानीकार सआदत हसन मंटो की जयंती पर 11 मई को उन्हें याद किया गया। रेहाना फाउंडेशन ने यह कार्यक्रम स्थानीय भारतेंदु भवन में आयोजित किया। मंटो को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित उनकी बेबाक और यथार्थवादी कहानियों जैसे टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त इत्यादि के लिए जाना जाता है। उनकी साहित्यिक यात्रा और उनके अवदानों पर बातचीत करते हुए आमंत्रित अतिथियों ने कहा,
1: पुरानी वाली जो मिर्जा गाली को भारत भूषण वाली उसकी बड़ी कथा संवाद उन्होंने लिखे, जो दिलीप कुमार की फुटपाथ है उसके उन्होंने बड़ी कथा संवाद लिखे हैं, बहुत ही अच्छे संवाद। उसमें दिलीप कुमार का एक जो बहुत लंबा मोनोलॉग है वो जो है दिलीप कुमार के सर्वश्रेष्ठ दृश्य में माना जाता है। फिर उनकी एक संस्मरणों की किताब है फिल्मी जीवन की मीना बाजार, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो अशोक कुमार से लेके कुलदीप कौर,

0: और श्याम और बहुत सारे उस समय जो फिल्म में काम करते थे उनके ऊपर जो संस्मरण है तो इतने बिंदास संस्मरण है और इतने मनोरंजक और इतने अच्छे लगता है कि जैसे हम सीधे उस आदमी को देख रहे हैं। ना तो उन्होंने किसी को बख्शा है, ना किसी की तारीफ करने में उन्होंने कोई कंजूसी की। तो इस प्रकार फिर उसके अलावा एक उनका जो लिखने का ढंग था वो बहुत अलग था। जब बहुत ज़्यादा लिखते थे, रात को लिखते थे, उनको खुद पता नहीं रहता था कि उन्होंने क्या लिख डाला है। सुबह उसको दोबारा पढ़ते भी नहीं थे, प्रायः उसको कोई अखबार के संपादक को दे देते थे और उसके बदले तुरंत पैसा दे देते थे और उस पैसे को तुरंत फूंकना शुरू कर देते थे। और फिर शाम को घर में सोने होने के पहले उनको चिंता रहती थी कि अब कल का दिन कैसे चलेगा, इसलिए कहानी लिखनी। और वैसे कहानी लिख देते थे, बीच बीच में सुधर भी जाते थे। जैसे बीच में एक बार मुंबई में उन्होंने संकल्प लिया कि अब सब छोड़ देना है और रोज एक कहानी और घर में ही रहना। जिस चाल में रहते थे वो एक ईसाई महिला की थी, तो उस मकान में उन्होंने ईसाई महिला को कहा कि मुझे तुम बस काली चाय और पाव रोटी देते, उसी को खा के उसी को पी के महीने भर कमरे में बंद रहे। 31 मई का महीना था, 31 कहानियां नहीं लिखी लेकिन 24 कहानियां उन्होंने लिख ली एक महीने में। वो एक अलग संग्रह है, रोज एक कहानी।
1: मिंटू एक ऐसे अफसाना निगार हैं जो मज्जा तक सच्चे हैं, मज्जा वहां तक वो देख लेते हैं। और अपनी कहानियों में मंटो जिन सच्चाइयों को दर्ज करते हैं, सामान्य रूप में हम उनसे आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाते। अब सोचिए कि जो इस हकीकत को बयान कर रहा उसकी आत्मा पर कितने घाव लगे हैं। उसको ऐसे भी जान सकते हैं कि मंटो की जो उम्र महज 42 साल थी वो वैसे ही नहीं थी। वो जो सामाजिक स्थितियां थी और जिसको वो बयान कर रहे थे, वो सच्चाइयां थी, उसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। और अत्यधिक शराब पीने से लीवर सिरोसिस हुआ और उनकी मृत्यु। मंटो ने अदब के लिए एक पैमाना तय किया और ताजिंदगी उस पैमाने पर वो कायम रहे। मंटो लिखते हैं, अदब दर्जा हरारत है अपने मुल्क अपनी कौम का, वह उसकी सेहत और बीमारी की खबर देता है। मैंने जो साहित्य है वो एक मुल्क का जो हाल चाल है, उसकी जो स्थिति है, उसको वो बताता है। इसके लिए वो एक अपना पैमाना तय करते हैं और इससे डिगते नहीं कि उसके बदले उन्हें मुकदमे झेलने पड़ेंगे, गालियां सुननी पड़ेंगी। कबीर तो पहले ही कह गए थे, मैंने बात ही की, साँच कहे जगमा रंधा है। इसलिए जब हम बंटवारे की बात करते हैं, बंटवारे की बात आती है, तो एक महज ऐतिहासिक घटना नहीं है, वो मंटो के लिए एक जीवित संदर्भ है। एक ऐसा जग जो कभी भरता नहीं, कभी नहीं। मंटो जैसा लिखने वाला कोई आदमी इधर बिहार में पैदा नहीं हो सकता था, कोई गुप्त काल में मंटो पैदा नहीं हो सकता था। और मंटो के समय में ही देखिए, मंटो ने जब अपना संपूर्ण लेखन किया जिस दौर में, कोई जबलपुर का साहित्यकार विभाजन की कहानियां नहीं लिख सकता था, कोई छत्तीसगढ़ का ही लिख सकता था। तो मंटो जहां पैदा हुए, जब पैदा हुए, जिन परिस्थितियों में पैदा हुए, उन परिस्थितियों का बड़ा योगदान था मंटो को बनाने में और मंटो को बनने में। अब फिर मंटो के दिमाग का कुछ केमिकल कंपोजिशन ऐसा था, सामाजिक परिस्थितियों को देखकर वो ऐसा महसूस करते थे। उनके दौर में कई सारे लेखक हुए, उन्हीं के साथ में गद्य साहित्य भी लिखते थे, लेकिन उसमें मंटो का तेवर अलग था, उनका टेस्ट अलग था। कृष्णचंद्र को आप पढ़िए, कमलेश्वर को पढ़िए, और भी उसमें जो थे बेदी और सजाद जहीर, उसमें मंटो का तेवर अलग है, उनके कहने का अंदाज अलग है, घटनाओं को महसूस करने का, उनको देखने का नजरिया अलग है। छोटी छोटी घटनाओं में, छोटी छोटी परिस्थितियों में कहानी

0: અહંકારના એક અનુઠા અંદાજ છે.
1: पिछले कुछ दिनों में लोगों में देश के प्रति प्रेम और उसके प्रदर्शन की भावना बढ़ी है. लोग अनेक तरह से अपनी भावुकता व्यक्त कर रहे हैं. कहीं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, कहीं गोष्ठियां, तो कहीं गीत संगीत का कार्यक्रम हो रहा है. इसी क्रम में संस्था सनातन प्रवाह की ओर से भारत माता की आरती का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों के साथ ही भारत माता की भव्य आरती की गई. स्थानीय गायक कलाकार श्री गोपाल पांडेय ने अत्यंत भावुकता के साथ भारत माता की आरती की. प्रस्तुत है कार्यक्रम का संपादित अंश.

0: नगर में देश प्रेम की भावना हर ओर दिखाई दे रही है। एक ओर भारत माता की आरती की गई तो दूसरी ओर काव्य श्रृंखला संस्था की ओर से एक संभाग स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से पधारे कविजनों ने अपनी कविताओं का पाठ किया। प्रस्तुत है कुछ ध्वनि चित्र।
1: देखिए, अब मैं अपने गुरु को प्रणाम करता

0: हूँ और गुरुओं के गुरु भगवान भोलेनाथ को इन चार पंक्तियों से प्रणाम करता हूँ कि नशेष है ना शेष है किंतु वे विशेष है, पूर्ण सृष्टि महज जिनका केवल एक केश है, मौन धारण किए हुए साधारण सा वेश है, जंगल पर्वत योगी सा उनका तो परिवेश है, त्रिनेत्रधारी त्रिपुरारी है भयंकर रोग यह इसको मिटाओ दोस्तों, है भयंकर रोग यह इसको मिटाओ दोस्तों, स्वर्ग की दीवार को अब तो गिराओ दोस्तों, अब बढ़ गया है कद तुम्हारा, जानते हम भी यह, अगली लाइन पे ताली चाहूंगा कि बढ़ गया है कद तुम्हारा, जानते हम भी यह है, हमसे मिलना हो तो अपना कद घटाओ दोस्तों, वाह, हमसे मिलना हो तो अपना कद घटाओ दोस्तों, हमसे मिलना हो तो अपना कद घटाओ दोस्तों।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की परिक्रमा जिसमें वाचन स्वर था अंजनी कुमार पांडे का, और अब लीजिए पेश है ज्ञान और मनोरंजन के विविध रंगों से सजी हमारी आज की विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, इन दिनों के मौसम को आप देख ही रहे हैं, कभी बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज धूप है, तो शाम को अचानक मौसम बदल रहा है, तेज बारिश हो रही है और मौसम ठंडा हो जा रहा है। ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी चाहिए, और हम ये कह सकते हैं कि गर्मी का मौसम अभी गया नहीं है, नौतपा बचा हुआ है, तो आने वाले गर्मियों में हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ ENT डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, जो कि वर्तमान में NPCCHH जलवायु परिवर्तन के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी हैं। हम आपसे बातचीत करके इन विषयों को समझने की कोशिश करेंगे।

0: डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल यही है कि नवतपा में हीट वेव चला करता है, लू चला करता है, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव, क्या असर दिखाई देता है?
1: जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले समय में जो गर्मी का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होने की संभावना रहती है, ये नवतपा में ही रहती है। इसमें जो बढ़ने का जो कारण है कि डायरेक्ट, जैसा आपने पहले बताया कि इस समय में सूर्य की डायरेक्ट किरणें जो है पृथ्वी पर पहुंचती है, और ये लगभग हर साल ही होता है। पर्यावरण प्रदूषण इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ में जंगलों की जो है कमी भी अब आने वाले समय में जैसे जैसे विकास हो रहा है कमी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन इसका एक तौर पर उभर करके सामने आ रहा है। यदि हम हीट वेव की यदि बात करें तो हीट वेव का मतलब ये होता है कि जो आपका जो वर्तमान का जो टेम्परेचर है जो चला आ रहा है उसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बढ़ोतरी, जब ये एक हफ्ता तक परसिस्ट रहती है तब उस समय अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो समय है ये हीट वेव का है या लू ऐसी स्थिति में लग सकता है। पहाड़ी तौर पर सामान्य रूप से मौसम ठंडा रहता है, वहाँ का यदि 30 डिग्री आमतौर पर औसत टेम्परेचर रहता है, यदि वहाँ का 30 डिग्री का टेम्परेचर 35 डिग्री में हो जाता है और मैदानी एरिया जैसे अभी हमारा अंबिकापुर का है, सरगुजा का है, तो वैसी स्थिति में 45 डिग्री का जैसे हो जाता है या उसके आसपास रहता है, तो वैसे स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि बहुत तेज गर्मी का जो प्रभाव है हमारे मानव जीवन में पड़ता है, जिसको हम लोग लू लगना, हीट स्ट्रोक या फिर जो है नवतपा की गर्मी, ऐसा अपन बोल सकते हैं।
0: सर, ये जो नवतपा की गर्मी है इसमें हाई रिस्क में कौन होते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जिन पर ये बहुत ज्यादा प्रभावी होता है?
1: सबसे पहले हम ये समझ लें कि

0: कि ये जो हीट वेव या लू लगना है ये कैसे हमारे शरीर के सिस्टम पर काम करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से हमारे इम्पॉर्टेंट 5 वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, ब्रेन, लंग या फेफड़ा, किडनी और हार्ट, ये जो हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, ये ऑर्गन में एक निश्चित टेम्परेचर पर सही ढंग से काम करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उस समय में ये सामान्य जो वाइटल ऑर्गन जो कि हमारे को जिंदा रहने के लिए आवश्यक होते हैं, ये ऑर्गन प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाते हैं और उसका फलस्वरूप ये होता है कि उस समय जीवन की जो रहती है वो जीवन जोखिम में पड़ सकता है। तो ये सारी सिस्टम अब किस में ज़्यादा प्रभावित हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जो कि पहले से पुराने बीमारी से ग्रसित हो, जैसे जिनका डायलिसिस चल रहा है, जो कि दूसरे कैंसर जैसे बीमारी से ग्रसित है, ऑलरेडी उनकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर की, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है। तो मैं कहूँगा कि यदि इन ऑर्गन संबंधी, जैसे किडनी का है तो किडनी फेलर, हार्ट का है तो हार्ट के पेशेंट जो हैं, फेफड़ा है तो उनको जिनको आपको फेफड़े से संबंधित जो निमोनिया की शिकायत होती है, टीबी की शिकायत होती है या फिर दमा की शिकायत होती है, ऐसे मरीज, ब्रेन में यदि किसी प्रकार का स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, ऐसे मरीज चाहे किसी भी उम्र के हों, वो व्यक्ति जो रहते हैं इस लू से प्रभावित आसानी से हो सकते हैं, उनको बचने की जरूरत है। दूसरा है कि उम्र के हिसाब से यदि देखा जाए तो अर्ली ओल्ड चाइल्डहुड की उम्र जो रहती है वो बीमारियों को झेल नहीं पाती, परेशानी को झेल नहीं पाती है, छोटे बच्चे जी, और या फिर 50 साल से ज़्यादा की बुजुर्ग लोग, वो उनमें बीमारियों से लड़ने की स्थिति परिस्थितियों के अनुसार से अपने शरीर को के टेम्परेचर को मेंटेन करने की सिस्टम जो रहता है वो थोड़ा सा कमजोर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति दोनों अर्ली चाइल्डहुड के और हमारे बुजुर्ग व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को इस लू से बचने की आवश्यकता होती है।
1: डॉक्टर साहब, ये जीवन है और लोग जो हैं वो चुनौतियों से जूझते हुए अपना काम तो करते ही हैं। ऐसे में कौन कौन से एहतियात हो सकते हैं कि यदि धूप में निकलना ही पड़े, काम करना ही पड़े, तो किस तरह से वो बाहर जाएं और अपना काम करें?
0: ये सही है कि हम मौसम को नहीं बदल सकते, परंतु यदि मौसम के अनुरूप हम यदि अपने आप को बदल लेते हैं तो मौसम के कारण से जो शरीर में दुष्प्रभाव होना है उससे हम पूरी तरह से बच सकते हैं। तो हम अब शुरुआत करते हैं कि यदि तेज गर्मी है तो ये धूप गर्मी कहाँ से आ रही है? ये गर्मी ऊपर से आ रही है। तो बाहर यदि निकलें तो ज़्यादा गर्मी के समय में हम अपने सिर को ढक कर रखें, चाहे तो कपड़ा से ढक कर रख सकते हैं, चाहे तो इसके लिए हम छाते का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, पहनावा जो शरीर की त्वचा को ढकता है, तो चूंकि शरीर इसमें सहायक सिद्ध होता है, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए शरीर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो रहता है चमड़ी के माध्यम से निकालता है। ये एक रक्षात्मक एक रवैया होता है शरीर का, जिससे शरीर हेल्दी बना रहता है,
1: पसीना होता है,
0: पसीना निकलता है। पसीना को रोकने वाले टाइट जो कपड़े होते हैं उनका इस मौसम में पूरी तरह से प्रयोग ना करें, और लूज कपड़े पहनें जिसमें आसानी से हीट जो है वो शरीर से निकल सके। दूसरी बात रहती कि जो चटकीले जो रंग होते हैं, जो गहरे रंग के कपड़े रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हीट को एब्जॉर्व करते हैं। तो ऐसे इस मौसम में ढीले ढाले कपड़े पहनना चाहिए और हल्के रंग के कपड़े जो है वो पहनना चाहिए। साथ में अपने साथ में यदि बाहर निकल रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको हमेशा पानी का बोतल, लिक्विड चीज़ की, यदि पानी ज़्यादा निकल रहा है तो उस समय जरूर रखना चाहिए। बिना पानी का बोतल रखे अपने साथ में नहीं निकलना चाहिए। यदि आप गाड़ी में हैं, फोर व्हीलर में हैं, कई बार ये रहता है कि कुछ काम से हम पार्किंग में गाड़ी को रख देते हैं, छोटे बच्चे लोग गाड़ी में रहते हैं, ये कई बार देखा गया है, तो इससे बचना चाहिए। पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी रहती है, उसके अंदर में, गाड़ी के अंदर में पैट को या बच्चे को ना छोड़ें। ये एक निहायत ऐसी जरूरी चीज़ है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पानी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएं। इस मौसम में जो अनुकूल खाने की, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसमें मौसम के अनुसार से परिवर्तन करें, जिसमें से चाय, कॉफ़ी, इसको कम करें या बंद कर दें, क्योंकि इससे शरीर में पानी जो निकलता है वो ज़्यादा मात्रा में निकलने की संभावना रहती है। इसके स्थान पर नींबू का शरबत है या लिक्विड है या दही छाछ, जैसा भी बोला जाता है, जो लिक्विड चीज़ है, मौसमी खरबूज तरबूज इस तरह की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मैं

0: समझता हूँ इस विधि का उपयोग करके हम लोग मौसम की प्रतिकूलता को शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता में चेंज कर सकते हैं।
1: अभी तक तो हम मनुष्यों की बात कर रहे थे, घर में पालतू जीव भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब पर हम पर असर है तो उन पे भी असर होगा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा संक्षेप में बता दें कि उनके साथ कैसा व्यवहार करें।
0: दिन के समय में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कोशिश करें कि जो जानवर पेट हैं उनको घर के अंदर में रहें, छाया में रहें, और ऐसे समय में जो है जैसे मैंने बताया कि पार्किंग में गाड़ी के अंदर में पेट को नहीं करें, पानी की व्यवस्था उनकी निरंतर बनाकर रखें कि 24 घंटा उनको पानी जो है वो मिलता रहे पीने के लिए।
1: डॉक्टर साहब अक्सर हम देखते हैं कि लू लगने के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि उल्टी, सर दर्द, चक्कर आना, कभी कभी लूज मोशन भी होने लगता है, तो ज़रा उन लक्षणों के बारे में हमें बताएं। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि लोग उतना ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि अरे उल्टी तो एक ही बार हुई है, ठीक हो जाएगा, दस्त तो एक ही बार हुआ है, ठीक हो जाएगा, तो कब माने कि स्थिति गंभीर होती है और डॉक्टर साहब के पास चले जाना चाहिए।
0: ये कहना आपका एकदम सही है, यही चीज़ हम लोग अपने फील्ड में देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी हॉस्पिटल में लू से बचने के लिए अलग से इस समय में एक वार्ड बने रहते हैं, जिसमें से ऑलरेडी 10 लेकर के 20 बेड जो रहते हैं कि लू, सामान्य लू से कि यदि व्यक्ति यदि भर्ती होने आए तो उनको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग एडमिट करने की व्यवस्था सभी शासकीय हॉस्पिटल में रखते हैं। इसमें यदि एक बार भी उल्टी हो रहा है या चक्कर आ रहा है, ये भी लू लगने वाले व्यक्ति के लिए गंभीर परेशानी हो सकती है। इसको आसानी से ना ले, ये शरीर में लवण या जो इलेक्ट्रोलाइट रहती है उसकी कमी से ही होता है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है ये ब्रेन के फंक्शन के लिए, ये हार्ट के धड़कने के लिए, हृदय के धड़कने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, और इससे सडन कोई भी ऐसी घटना घटित हो सकती है जिसमें से जो मरीज की समय रहते जान बचा पाना जो रहता है मुश्किल जाता है। तो ये वाकई में गंभीर एक अलार्म है। यदि लू लगते समय यदि किसी को एक बार भी उल्टी होती है या लूज मोशन होता है या चक्कर आता है, वैसे स्थिति में तत्काल उसका प्रॉम्प्ट जो है वो इलाज जो है चालू कर देना चाहिए। इलाज में भी सामान्य सा तरीका ये होता है कि सबसे पहले टेम्परेचर को हमको कम करना है मरीज का, तो पूरे बॉडी को ठंडे पानी से हमको पोंछना है। दूसरी बात है कि निर्जलीकरण हो चुका रहता है तो वैसी स्थिति में उसके पानी को सप्लीमेंट करना रहता है, और जो ORS का घोल जो रहता है वो उस समय देना रहता है।
1: डॉक्टर साहब कुछ लोग सुबह और शाम को व्यायाम करने के लिए निकलते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं, पसीना बहुत होता है, उनके लिए क्या सुझाव है?
0: ऐसे मौसम में मैं कहना चाहूँगा कि गर्मी के समय में 7 बजे के बाद में, सवेरे 7 बजे कोशिश करें कि ये एक्सरसाइज वाला जो कार्य जो है वो ना करें। उस समय टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण से एक्सरसाइज में जो पसीना निकलेगा वो तो निकलेगा ही, साथ में इन्वायरमेंट के टेम्परेचर हाई होने के कारण से जो पसीना निकलेगा वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को जो रहता है दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। तो इसीलिए 7 बजे के पहले जो भी एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक जाना है वो करें, और शाम को सूरज ढलने के बाद में इस मौसम में विग्रस एक्सरसाइज करने से बचें।
1: डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल है कि परिस्थितियां अभी ही क्यों बिगड़ रही हैं? पहले भी नौतपा हुआ करता था, लोग हमारे पूर्वज पुरखे उससे जूझा करते थे, स्थितियां अभी क्यों विकट होती जा रही हैं?
0: जी हाँ, ये अभी इसके बारे में काफ़ी विचार और लगातार बैठक होती है कि ऐसा आखिर क्यों रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा पर्यावरण प्रदूषण। जो पर्यावरण प्रदूषण रहता है उसके कारण से सूर्य की किरणों का डायरेक्ट पृथ्वी में पड़ने से ओजोन का जो लेयर रहता है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। वो ओजोन का लेयर अभी के समय में पर्यावरण प्रदूषण के कारण से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, पहला चीज़ ये देखा गया है। दूसरा चीज़ है कि जितनी संख्या में वन होते थे, पेड़ पौधे होते थे, उनकी कहीं ना कहीं कमी जो है, क्योंकि विकास हो रहा है तो विकास जो हो रहा है इस कास्ट पर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जंगल जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। इस मौसम में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इस मौसम में जो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि इस मौसम में होती हैं, जिसमें से मलेरिया है, डेंगू है, ये पानी में इस समय में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट होते हैं। तो ऐसे भी बीमारियों से हम

0: आपको बचाव की इस मौसम में लू के साथ साथ बचने की जरूरत होती है।
1: डॉक्टर साहब, सवाल तो ढेर सारे हैं लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, और ये जो हमारी बातचीत हुई है उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं की एक समझ बनी होगी इस मौसमी बीमारी पर, खासतौर पे जो नवतपा के समय जो हीट वेव, उस पर कैसे हम अपनी जीवनचर्या रखें। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी हम बातचीत कर रहे थे NPCCHH अर्थात जलवायु परिवर्तन के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी ENT डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता से। बातचीत का विषय था बढ़ते तापमान और बदलते मौसम में कैसे रहें स्वस्थ। उम्मीद है इस बातचीत से आपकी एक समझ बनी होगी। इसी के साथ विविधा से अपने दोस्त अंजनी को यहीं दे अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिक्रमा विविधा। वाचन स्वर अंजनी कुमार पांडे का और प्रस्तुति परमेंद्र कुमार की। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

कार्यक्रम परिक्रमा। अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

एक नई और बेहतरीन सुबह में स्वागत है साथियों, आप सभी का बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका साथी अक्षय। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस समय की तीखी गर्मी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पानी जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे पानी का महत्व और गहराई से समझ में आता है। कई स्थानों पर लोग पानी को दूर दराज इलाकों से लाकर अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि हर बूंद कितना कीमती है। यदि हम इसे समझदारी से उपयोग करें तो कमी की स्थिति को काफ़ी हद तक संभाला जा सकता है। पानी का सही मूल्य तभी समझा जाता है जब हम उसे बचाने का संकल्प लेते हैं। इसलिए पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि एक ऐसी धरोहर के रूप में देखना चाहिए जिसे सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। बातें करेंगे आज इसी विषय पर। उससे पहले सुनिए फिल्म जोश का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अपनी चर्चा में आगे। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ग्रामीण जीवन का हर पहलू पानी से जुड़ा हुआ है। खेती, पशुपालन और दैनिक जीवन, सब कुछ पानी पर आधारित है। जब पानी का सही प्रबंधन किया जाता है तो सीमित संसाधनों में भी जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। कई गांवों में लोग मिलकर पानी का उपयोग और संरक्षण करते हैं, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बना रहता है। यह हमें सिखाता है कि सामूहिक प्रयास से पानी की कमी को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यदि पानी को सोच समझकर उपयोग किया जाए तो हर बूंद

जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक बन सकती है। चर्चा यूं ही जारी रहेगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अपनी चर्चा में आगे। साथियों, आज की गर्मी हमें यह अवसर देती है कि हम अपने पानी के उपयोग को और बेहतर बनाएं। छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम बड़ी मात्रा में पानी बचा सकते हैं। जैसे नल को समय पर बंद करना, ज़रूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करना और बेवजह इसे बहने से रोकना। यह केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब हर व्यक्ति अपने स्तर पर जागरूक होकर पानी का उपयोग करता है, तो सामूहिक रूप से बड़ा परिवर्तन संभव है। इस तरह हम बिना किसी कठिनाई के अपने दैनिक जीवन में पानी बचाने की आदत और विकसित कर सकते हैं। चर्चा यूं ही जारी रहेगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म यस बॉस का ये गीत, अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है जतिन ललित का।

0: ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा,

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं ए दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: एदे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
1: है। हाँ, अब ये तो शुरू है कि साहे।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। तो साथियों, बढ़ते हैं आज की अपनी चर्चा में आगे। श्रोताओं, यह गर्मी हमें एक सकारात्मक संदेश देती है कि यदि आज से ही पानी बचाने की आदत अपनाई गई तो आने वाला समय अधिक संतुलित और सुरक्षित हो सकता है। पानी का संरक्षण केवल वर्तमान की जरूरत नहीं बल्कि भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। यदि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह पानी की एक एक बूंद को बचाने का प्रयास करेगा तो समाज में एक बड़ा बदलाव संभव है। बच्चों को भी इस दिशा में जागरूक करना आवश्यक है ताकि वे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकें। इस तरह हम मिलकर एक ऐसी सोच को विकसित कर सकते हैं जो जीवन को स्थिर और समृद्ध बनाए रखे। कार्यक्रम के अंत में सुनिए कोयला फिल्म का ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार हैं इंदीवर, संगीत राजेश रोशन का है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: इंतजार रहेगा, सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज और कल रायपुर तथा बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है। और सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने कल धमतरी में 465 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर बीती शाम रायपुर पहुंचे। रायपुर विमानतल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री शाह का स्वागत किया। श्री शाह आज और कल रायपुर और बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर बाद रायपुर के माना में स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज दोपहर वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 19 मई को जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये राज्य का पहला दौरा है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू होगा। 25 मई तक चलने वाला ये अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा

जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांव को शामिल किया गया है। अधिकारी गांव में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल धमतरी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जिले के विकास के लिए 465 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने धमतरी में 4-लेन सड़क, इंटरक्वेल और गौरव पथ निर्माण कार्य को मंजूरी दी। इसके अलावा उन्होंने कुरुत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपए और पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। जगदलपुर के बालिंगा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आज सुबह एक बस के पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है। वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस रायपुर से कोंटा की ओर जा रही थी। जशपुर जिले में स्थित घोघरा डैम में डूब रही अपनी बेटी को बचाने के प्रयास में मां ने भी जान गंवा दी। इस हादसे में मां और 8 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि बड़ी बेटी किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में सफल रही।

0: यात्री की मौत हो गई है, वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस रायपुर से कोंटा की ओर जा रही थी। जशपुर जिले में स्थित घोघरा डैम में डूब रही अपनी बेटी को बचाने के प्रयास में मां ने भी जान गंवा दी। इस हादसे में मां और 8 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि बड़ी बेटी किसी तरह तैर कर बाहर निकलने में सफल रही। बताया जा रहा है कि मृतक महिला गर्भवती थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज और कल रायपुर तथा बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है। और सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने कल धमतरी में 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 10 बजे हैं। अब समय है तापमान संबंधी सूचनाओं का। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रोताओं, ये थी तापमान संबंधी सूचना। अब जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, आज दिन के 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। दोपहर 1:40 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। श्रोताओं, दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत कंधा।

श्रोताओं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे आज शाम 5:30 पर। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम माधुरी। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे आज रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी आप सुन सकेंगे आज रात्रि 10 बजे, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे सारंगी वादन उस्ताद सुल्तान खान द्वारा, राग होगा मालकोस। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

0: श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत फोन इन कार्यक्रम। प्रस्तुति सहायक हैं पॉलुमी हरी, प्रस्तुतकर्ता हैं प्रमेंद्र कुमार।
1: हेलो,

0: आपकी बात आपके गीत। इस कार्यक्रम में हम आपसे करते हैं फोन पर बातें और रूबरू होते हैं आपकी फरमाइश से। इस कार्यक्रम की आज की कड़ी के साथ मैं हूं पौलमी। मई का महीना है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। इस भीषण गर्मी में सुबह जल्दी हो रही है और शाम देर से। धूप लंबे समय तक खिली रहती है। इस गर्मी में आप अपनी सेहत का ध्यान तो रख रहे होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आप सभी का प्यार हमें चिट्ठी और ईमेल के माध्यम से निरंतर मिलते रहता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी आवाज में, आपकी जुबानी, आपके ही अंदाज में आपके मनोभावों से जुड़ते हैं। और इसी के साथ शुरू हो चुका है कॉल का सिलसिला, तो देर ना करते हुए उठाते हैं पहला कॉल और सुनते हैं आपके दिलों की बातें। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: हाँ मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, अपने बारे में बताएं।
1: मैं पहली बार कॉल लगा रही थी मैडम, फोन लगे नहीं रहा था।
0: चलिए कोई बात नहीं, अब तो आपका नंबर लग गया, अपने बारे में बताइए।
1: हाँ तो मैडम, मेरा ही शौक था कि मेरा भी एक बार नाम आए।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिख के रखी थी, नंबर बनता ही नहीं था, उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन बनाई। बताइए मैडम।
0: मेरा नाम है पौलमी।
1: पौलमी मैडम, हाँ मैं तो रेडियो सुनती हूँ ना, तो आपका मैं सब समय देखती हूँ कि आज पौलमी मैडम आया। तो मैं आप लोगों के जितने भी हैं सबको को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप लोगों का आवाज है, बात है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो बहुत खुशी लग रहा मैडम। रूबी भवाल बोल रही मैडम, मैं गणेशपुर से रूबी भवाल बोल रही हूँ।
0: कब से सुन रही हैं आप रेडियो?
1: मैडम आपको मैं बताऊंगी तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। जब मैं छोटी थी ना, एकदम छोटी, उस समय से मेरा मम्मी पापा लोग रेडियो सुनते थे, उस समय से मैं रेडियो सुन रही हूँ। 85 में मैं 11वीं का एग्जाम लिखी, लेकिन सब कुछ रेडियो मेरे घर में था मैडम, लेकिन ना कभी भी मैं नंबर बना नहीं पाई। इस बार मैं नंबर को बार बार ट्राई करके लिख के रखी थी, उस समय छोटा मोबाइल था ना मैडम।
0: जी जी,
1: तो बन नहीं रहा था। तो इस बार मेरी बेटी मेरे को बड़ा मोबाइल लेके दी है।
0: बधाई हो।
1: मेरी एक ही गुड़िया है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने स्टेनो है, लेकिन उसका जॉब लगते लगते नहीं हुआ। कोई बात नहीं, शादी हो गई है, खुशहाल जिंदगी जी रही है।
0: जी जी,
1: तो मैडम अब खुशी है इतना ज्यादा, तो एक अपना पसंद का ही गाना सुना दीजिए। गाना तो बहुत है, लेकिन अभी खुशी के बारे में बोल नहीं पा रही हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी इतनी बड़ी प्रशंसक हैं और आपसे मेरी बातचीत हो पा रही है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप हमारे सारे कार्यक्रम पसंद आते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। तो आप चाहती हैं कि कोई सभी गीत मैं आपके लिए चुनूं?
1: हाँ
0: ठीक है, तो हमें कॉल मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी मैडम।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: हेलो,
0: नमस्कार, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी मैडम नमस्कार,
0: अपने बारे में बताइए।
1: जी मैडम, मैं ग्राम पंचायत खुंदला उदयपुर से जीवधन सिंह टेकरे बोल रहा हूँ मैडम।
0: जीवधन जी, कैसे हैं?
1: एकदम बिल्कुल ठीक हूँ मैडम।
0: और गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो कैसे मना रहे हैं गर्मी?
1: जी गर्मी, यहाँ बहुत गर्मी पड़ रहा है मैडम। बाहर तो अब नहीं, ज्यादा नहीं घूमे हैं हम लोग, बस ऐसे ही गाँव में घूमते रहते हैं, ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं हम लोग तो।
0: अच्छा, और गाँव में तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होंगे।

0: अभी हवाएं चल रही होंगी, गर्मी है, मगर बारिश बरखा के कारण बड़ा ही सुंदर एक दृश्य बन रहा होगा गांव में।
1: जी, मतलब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें बहुत सारे बच्चे वहाँ घूमने जाते हैं देखने के लिए।
0: अच्छा।
1: वहाँ क्या बोलते हैं, 4 दिन में मिलता है, उसी को खाने के लिए चले जाते हैं जंगल में। हमारे बस गांव में लगा हुआ है जंगल, पहाड़ जैसे रामगढ़ पहाड़ है वही टाइप के है मैडम।
0: जी,
1: आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम। अभी कार्यक्रम के बदलाव हुए हैं मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। इस तरह फरमाइश जो आता है ना, अच्छा अच्छा की सुनने को मिल रहा है मैडम, बहुत अच्छा लगता है मैडम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे कार्यक्रम नए कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं, खासकर इंस्टा फरमाइश की काफी तारीफ सुनने को मिल रही है, और आप सभी की भागीदारी पर ही वो कार्यक्रम चलता है, तो धन्यवाद के पात्र होते हैं वो आप हैं, आप सभी हैं।
1: आज गाना सुना है मेरे को, फिल्म है अमन, टोटल टाइटल सॉन्ग सुना दीजिएगा मैडम।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: हाँ दीदी, जय राम।
0: जय राम, अपने बारे में बताइए।
1: मैं नानघाट का तलपुर नवागढ़ क्षेत्र से भाग सिराजपुर बोला था दीदी।
0: बड़ा ही अनोखा नाम है आपका।
1: हाँ बेटा,
0: तो कैसे हैं?
1: बढ़िया है दीदी।
0: और गर्मी कैसी पड़ रही है आपके इलाके में नानघाट?
1: गर्मी तो खूब पड़ रही है, शाम को मौसम हवा तूफान और पानी भी आ रहा है कभी कभी। शाम के टाइम बाहर नहीं निकलते, क्या है मौसम उसी समय ज्यादा खराब होता है।
0: जी जी जी और क्या करते हैं राजपूत जी?
1: मैं खेती का कार्य करता हूँ दीदी।
0: तो बताइए आपको कौन सा गीत सुनाएं? गर्मियां तो बहुत तेज हैं, तो उसी हिसाब से एक मजेदार गीत हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए अपनी पसंद
1: फिर
0: पर।
1: मैं गिरफ्तार कर सुनवा दीजिएगा। धूप में ना निकला करो रूप की रानी वाला गीत।

0: स्वागत है आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में, अपने बारे में बताइए।
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ, मैं कुर्मी पारा बेमेतर से।
0: सूरज कुमार सारथी जी कैसे हैं, गर्मियाँ कैसे कट रही हैं आपकी?
1: गर्मी तेज है मैम, शाम को तेज हवाओं के साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हो जाता है मैम।
0: जी जी जी,
1: दो दिन से वैसी हो रहा है, मौसम चेंज हो जाता है और दिन भर गर्मी रहता है मैम।
0: जी जी जी,
1: घर से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ जाता है मैम, इतनी भीषण गर्मी है।
0: सही बात है, बताया जा रहा है कि इस साल मई 31 तक 12 बजे से शाम के 4 बजे तक कोई आवश्यक काम ना हो तो बाहर नहीं निकलना है, तो ऐसी गर्मी में आप अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे?
1: बिल्कुल मैम, सेहत का ध्यान रखते हैं और तेलों कुला जो सब्जी है मिर्च मसाला वाले को सेवन नहीं करते हैं मैम, और फल फ्रूट ज्यादा खाते हैं और पानी अधिक पीते हैं मैम।
0: जी,
1: और बच्चे लोगों को अधिक पानी पीने के लिए प्रेरित करते हैं।
0: जी जी जी,
1: और हर आधा घंटे एक घंटे में कम से कम एक गिलास पानी पियो करके।
0: हाँ।
1: और ये सब गर्मी का कारण है मैम कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, पेड़ों की जो कटाई हो जाती है मैम, और पेड़ लगाते नहीं है, इस नाम से भीषण गर्मी का प्रकोप को झेलना पड़ता है सभी धरती में भी जीव जंतु हैं सबको।
0: जी,
1: और पानी के भी बहुत गहराई से संकट हो रहा है मैम।
0: जी जी, सही कह रहे हैं आप। अभी कुछ दिन पहले वट सावित्री की पूजा हुई थी, उसमें हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और
1: जी मैम, जी मैम,
0: और वहीं हमें देखने को मिलता है कि अब बरगद के पेड़ कम होते जा रहे हैं, अधिकतर इलाकों में एक या दो बरगद का पेड़ भी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है।
1: उसका आनंद भी अच्छा लगता था मैम, बरगद है, पीपल है, नीम का झाड़ है,
0: कलम
1: की झाड़ है, इसके नीचे में बैठ जाओ तो मस्त शुद्ध हवा मिलता है, ताजी भरी हवा मिलता है और छाया भी।
0: जी जी जी,
1: गर्मी भी कम लगता है, शुद्ध हवा भी मिलता है मैम।
0: हाँ, सही कह रहे हैं,
1: रहता है, लेकिन बरगद का झाड़, नीम का झाड़ और ये सब लगाना चाहिए मैम।
0: जी जी, आप सही कह रहे हैं,
1: बहुत जरूरी है, पीपल का झाड़ है क्योंकि ये छायादार वृक्ष होते हैं मैम, जो जितने भी बड़े होते हैं ना उतने घनाघोर रहता है मैम।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
1: और पूजा पाठ भी इनका होते रहता है, मन को तसल्ली मिलती है मैम।
0: हाँ, सही कह रहे हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने की, तो हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनाएंगे?
1: वो उपहार फिल्म का है मैम, मोहम्मद रफी की आवाज में है। एक राजा तू एक रानी है, क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: हेलो, नमस्कार बहना।
0: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सुरेश बगनेजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से ही।
0: अरे वाह सुरेश जी, हम याद कर ही रहे थे कि आपका कॉल कब आएगा।
1: पिछले 2-3 सप्ताह से मिल ही रहा था।
0: इस साल तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ही ज्यादा भीषण गर्मी पड़ने वाली है।
1: जी बिल्कुल, मॉनसून भी कम आया इस बार तो गर्मी तो फिर पड़ेगी।
0: और इतनी भीषण गर्मी में कैसे आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, मुझे तो सोच के ही आश्चर्य होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल जी, वो काम तो छोड़ ही सकते ही, कोई तो हमारा एक काम है जो वह जरूरी है हमारे लिए।
0: वाह, ये बात तो है कि इतनी गर्मी में आप लोग इतनी धूप में जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, हमारे पूरे देश का भरण पोषण करने के लिए। तो आप सभी किसानों को
1: बिल्कुल
0: सलाम है, आप सभी किसानों को कि इतनी मेहनत करते
1: शुक्रिया जी,
0: हैं।
1: शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: गर्मी छुट्टियों में कहीं तो जाते होंगे आप सभी घूमने,
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: तो कहाँ गए थे इस साल,
1: अभी तो नहीं गया, जाना है बस,
0: कहाँ जाने का सोच रहे हैं?
1: शिमला जाने का है।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, अपने बारे में बताएं।
1: रोशन देवांगन बोल रहा हूँ, बिलाईगढ़ से।
0: कैसे हैं रोशन जी?
1: बस बढ़िया है मैम।
0: कैसे चल रही है गर्मी की छुट्टियाँ?
1: अब हमारा तो छुट्टी नहीं होता है मैम, हमारा तो डेली का काम है। घर में अपना काम करते हैं, हाथ कारीगर से साड़ियाँ बनाते हैं, संबलपुरी साड़ी काटन की, और हमारा तो काम चलता ही रहता है। ये क्या है ना, वहाँ उड़ीसा, जितने भी उड़ीसा प्रांत है ना, ये वहाँ का डिजाइन है। ये इधर के लोग इसको नहीं पहनते हैं।
0: अच्छा।
1: जो पहनते हैं वो अपने शौक से पहनते हैं, लेकिन जो प्लन जो है उड़ीसा में ही है ज्यादा। बॉर्डर में मछली बनता है मैम।
0: अच्छा।
1: और इधर मैं बना रहा हूँ, उसमें एक तरफ हाथी बन रहा है और एक तरफ बन रहा है पुतली बन रहा है एक तरफ।
0: अच्छा, तो ये सब हाथ से बनाई जाती है
1: जी। ये जो है ना, ये डिजाइन जो है ना, वो जितना एक कलर बन कराता है मैम, उड़ीसा से ही आता है सारा माल। उसको हम लोग धागा को, एक एक धागा को निकाल के सबको जमाते हैं उसको।
0: ये तो काफी मेहनत का काम है। इस कला के बारे में ज्यादा लोग अवगत नहीं होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे साझा करने के लिए। और बताइए, आपको कौन सा गीत सुना है रोशन जी?
1: आज फिल्म चांदनी का गीत सुना देना मैम, रंग भरे बादल में।
2: चांदनी

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, अपने बारे में बताइए।
1: भुवनेश्वरपुर से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम कवल साहब प्रजापति है। मैडम, मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ।
0: हवाएं चलती हुई सुन सकती हूँ मैं फोन के माध्यम से। पीछे बहुत
1: चल रही,
0: बहुत तेज हवाएं चल रही है। आंधी आने वाली है क्या वहाँ पर?
1: जी जी, बाहर में हूँ, काम कर रहा हूँ ना, वो सेटरिंग ठोक रहे हैं, राजमिस्त्री काम करता हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: नसीब फिल्म का सुना, सबके सामने दिल चुरा लेंगे।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं राजकुमार
0: निवानी जी, आप हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं और हमें सुनते रहते हैं, और अपने बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं आप क्या करते हैं। अच्छा,
1: और आकाशवाणी अंबिकापुर से बहुत पुराना रिश्ता है, 95 से मेरा जुड़ा है आकाशवाणी अंबिकापुर से।
0: जी जी जी,
1: और बराबर पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और फोन कहने से जुड़ते रहता हम।
0: जी, तो आप हमारे गीतों को सुनते रहते हैं और हमारे कार्यक्रमों की आप समीक्षा भी भेजते हैं निरंतर, हम देखते हैं उसे भी, हम पढ़ते रहते हैं। चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में भी आपके कई पत्र हम शामिल कर चुके हैं, तो
1: सभी पत्र में शामिल है मैम, कोई शिकायत नहीं है, सब पत्र आपके पसंद, ईमेल सब में मेरे पत्र में शामिल होते हैं मैम।
0: हाँ, तो ये बताइए इस बार गर्मियों में आप क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे मना रहे हैं गर्मी की छुट्टियाँ?
1: गर्मी में क्या ना, इस बार थोड़ा देखिए मौसम का बदलाव, रोज तूफान पानी आ रहा है।
0: हाँ जी,
1: तो गर्मी में मैं कहता हूँ हमें स्वास्थ्य प्रति ध्यान देना चाहिए, पानी का ज्यादा ज्यादा सेवन करना चाहिए
0: जी,
1: और फल फूल जैसे बाजार में बहुत है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज, ये सब का सेवन करना चाहिए
0: जी,
1: और बाहरी खाने का परहेज करना चाहिए।
0: ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, सेहत का ध्यान रखना इस साल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है। क्योंकि लोग घूमने भी जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि तेल मसाले का सेवन थोड़ा कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करें।
1: और आकाशवाणी केंद्र को सुनते रहें
0: जी।
1: एक बात बोलूंगा मैम, जैसे अपन गाँव की बात करें मैम, तो जैसे अक्सर हम गाँव में देखते हैं मैम, सर्वधंस के कार्यक्रम होते हैं, किसी को सर्वधंस काट देता है, सर्व काट देता है।
0: हाँ,
1: तो गांव के लोग मैम क्या है ना, झाड़ फूक में ज्यादा ध्यान देते हैं।
0: हाँ,
1: और ज्यादा करके जमीन में सोते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कभी भी ऐसा काम न करें, तुरंत सर्जन रोगी को तुरंत हॉस्पिटल लाएं।
0: बहुत ही सही बात कही आपने कि झाड़ फूंक पर ज्यादा निर्भर ना करके डॉक्टर के पास जाना ज्यादा सही रहेगा। तो आप अपने पसंद का कोई गीत,
1: फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।

आपकी बात आपके गीत। इस कार्यक्रम में हम आपसे करते हैं फोन पर बातें और सुनाते हैं आपको आपकी फरमाइश के गीत। वक्त की कमी के कारण हम हर श्रोता को मौका नहीं दे पाते, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें फोन लगाने पर कम से कम 2 सप्ताह का अंतराल लें ताकि हम अधिक से अधिक

श्रोताओं को खुद से जोड़ पाएं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर रविवार सुबह 10:30 से आपके कॉल तक। हमसे कॉल मिलाएं हमारे इन नंबरों पर 0777-4231917 और 0777-4231918। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0777-4231918 और 0777-4231917। आपसे बातें करने के लिए हम होते हैं बेकरार।

0: 07774-231918 or 07774-231917। आपसे बातें करने के लिए हम होते हैं बेकरार, आपके कॉल का हमें रहता है इंतजार। तो हमें कॉल करें हर रविवार सुबह 10:30 पर। और इसी के साथ अपने कार्यक्रम से अपनी रेडियो साथी पॉलीमी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
3: आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया

0: राष्ट्र में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार के कमजोर रुझानों के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तौसीफ अख्तर के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, गीत लिखा है समीर ने और इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। अनारकली बाजार चकराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी कव्या और भाई सुच्चा पाठक। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति सरोजनी और कुंती साहू। अर्जुनी बलौदा बाजार से रानू साहू, पूजा और उमेश साहू। पुरानी भिलाई 3 पदमनगर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और पुर्रा सिद्दीकी परिवार। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। पीपरपारा पालछुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और फंशिका दिवाकर। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर यह प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत हमने लिया है अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म धड़कन से। संगीतकार है नदीम श्रवण और गीत लिखे हैं समीर ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साफी राही और मेरा जहानी, रामगढ़ कैंट से निप्पी साहनी, सुनीता साहनी और अशोक परोड़े ने, ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पूषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, सिद्धबाबा भाटापारा से संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा, शिवम वैष्णव, बुरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरव शर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: बरधा मान ले खेत ला जोतत रहे
1: हाँ,
0: है नहीं
1: हाँ,
0: बेरा हर ज्यादा लगे
1: हाँ,
0: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने
1: कौन कार्यक्रम ला
0: ये दे किसान वाणी
1: हाँ
0: तेकर में ये दे जानकारी भेटाइस नहीं
1: हाँ
0: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी अब ये विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में
1: हाँ
0: आए
1: हाँ
0: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं
1: हाँ
0: तहाँ
1: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हो
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही।
0: हम्म,
1: ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच
0: हाँ
1: और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं।
0: हाँ
1: अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी ये ला ये दे सुन सकते हैं।
0: हाँ अब ये तो शुरू है कि सहे
1: हाँ
0: हम्म,
1: तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम किसान
0: किसान वाणी।
1: वाणी।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू

कार्यक्रम आपकी पसंद में लीजिए अब सुनिए आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में श्यामराज का लिखा फिल्म दहक का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कनेरा मोहला पटियाला से मुकेश पत्ता, नीलम पत्ता, नितिन, पलक, करण, कीतू, निहारिका, वंश पत्ता और पत्ता परिवार के सभी सदस्यों ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाटकर, सरिता गम्हाटकर, सिद्धांत और प्रिंस एकांश गम्हाटकर। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गम्हाटकर, वैशाली गम्हाटकर, श्वेता सुमित गम्हाटकर और कुमारी थोड़ी गम्हाटकर ने। करजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, दीपक, दीपा, चांदनी और कृति। ग्राम बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। अडार नांदघाट जिला बेमित्रा छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम आपके पसंद में अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें की है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मिका, बलविंदर पीरक, चैतिक पीरक और मिका पीरक ने। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। बठिना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा। चटौदा सानागांव से सुजान वर्मा, सुहत्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। कर्नाटका चिक्का तिरुपति से प्रकाश, श्यामाला, अश्विनी, आनंद और मनवीत। बनेपारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, गाफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और माखीजा परिवार के सभी सदस्य। औरंगाबाद से राजेश साबली पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राशेश और राशि राजेश। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन का ये प्यारा सा गीत। आवाज़ है SP बाला सुब्रमण्यम की, संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने और शब्द रचना है देव कोहली की। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: कार्यक्रम आपकी पसंद में अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में समीर का लिखा ये गीत। फिल्म का नाम है रंग। इस गीत को पसंद किया है अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मसर अली अंसारी ने, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर यूपी से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद।

बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया एमपी से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास ओम प्रकाश सिंह, राज तेजवती, रुद्र और अदिति। भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, वीरेंद्र शुक्ला, रविंद्र शुक्ला और सहजन नायक। धरसीमा छत्तीसगढ़ से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, इकबाल कुरैशी, बलदाव यादव, राजेश्वरी और आस्था यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छनूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अदिति, अभिनव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। पद्मा टॉकीज निपनगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुश, परी, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह और सुषमा कपूर। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: छैया। आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
0: चलिए बनाएं एक मिसाल अपने प्यारे संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।
3: चलते चलते
4: कार्यक्रम में अब सुनिए मुस्कान फिल्म का ये गीत। आवाज है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। संगीत निर्देशन है निखिल विनय की और शब्द रचना है समीर की। इस गीत की फरमाइश करता है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से सुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। सरोजोक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया शुएब खान, साइमा खान, पोत्रा मुस्तफा खान, अफिया खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद। दसमली चौक परतूर जिला जालना से सुरेश अपत दसमली, सौरभ दसमली और सुधाकर। इसी जगह से है जयश्री दसमली, कुमारी शिवानी, अर्चना काटे, कुमारी आकांक्षा काटे, दसमली और काटे परिवार के सभी सदस्य। वैष्णो कॉलोनी सनावत एमपी से मोहम्मद शादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में तमन्ना फिल्म का ये प्यारा सा गीत। संगीतकार है अनु मलिक और गीतकार है इंदिवर। इस गीत के फरमाइश करता है पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू जगदीश, गोविंद देवांगन, विशाल पायल और अक्षय कुमार देवांगन, बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी और तृप्तिश देवांगन, मुकाम फुलसर व्याहा कटकोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत, सौर्य, कुमारी सानवी और परिवार के सभी सदस्य, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनीकर और धीरज सवासेरे, जादूगर किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नास, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, सबाना आलम और चांदनी नास, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, मोपका भाटापारा से भवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित और सुमित्रा साहू, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर तमन्ना फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: तमन्ना फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है। और जगदलपुर के पास बस पलटने से एक यात्री की मौत, 30 यात्री घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। ये कार्यक्रम माना स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। अभी तक प्रदेश के सिर्फ 16 जिलों में ये सुविधा थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने डायल 112 सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। इक्के नंबर सबो बर थीम पर आधारित ये सेवा पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी, आगजनी, सड़क दुर्घटना और आपदा जैसी हर आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी। इस आधुनिक व्यवस्था के तहत 24 घंटे और सातों दिन अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह आज जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज दोपहर वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कल 19 मई को जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू होगा। 25 मई तक चलने वाला यह अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। अधिकारी गांवों में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। जगदलपुर के बालिंगा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आज सुबह एक यात्री बस के पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है, वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस रायपुर से कोंटा की ओर जा रही थी। जशपुर जिले में स्थित घोघरा डैम में डूब रही अपनी बेटी को

जाने के प्रयास में मां ने भी अपनी जान गंवा दी। इस दर्दनाक हादसे में मां और 8 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है। और जगदलपुर के पास बस पलटने से एक यात्री की मौत, 30 यात्री घायल। इसी के साथ प्रादेशिक

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
3: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
3: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
3: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
3: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
3: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
3: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
3: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
3: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
3: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
3: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
3: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
3: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी

0: शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमलेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds? That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
7: Story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love you.
2: As I lie on my back,
3: looking up at the sky,
2: I see a big white bear,
3: looking down at me.
2: As I lie on my back,
3: looking up at the sky.
2: I see a ship sailing. On a white sea. As I lie on my back. Looking up at the sky. I see an elephant.
3: Waving its trunk at me.
2: As I lie on my back, looking up at the sky. Oh, it's fun to me. To see whatever I want to see. So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
3: Yes, sir.
7: They are beautiful.
5: They are very big.
6: They change the shapes.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
3: Yes, sir.
2: So kids, here comes the song, As I Lie. What?
3: As

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajender Pal. Technical Coordinator, Buddy Lang Lindo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
12: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
14: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं

0: कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
1: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं, और मातृ वृक्ष

0: से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृवृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, मातृवृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
1: अच्छा।
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृवृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृवृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चयन।

नमस्कार श्रोताओं, शीर्षक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन के आज के अंक में मैं आपके साथ हूं, आपकी रेडियो साथी धरती। आज के संगीत सफर में हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो केवल इंसान की पहचान नहीं बल्कि उसकी भावनाओं का आईना भी है। यह शब्द है चेहरा। चेहरा जो बिना कुछ कहे मन की हर बात कह देता है। कभी मुस्कुराता चेहरा दिल को सुकून देता है तो कभी उदास चेहरा भीतर तक बेचैन कर जाता है। किसी के चेहरे में अपनापन होता है, किसी में आत्मविश्वास तो किसी में छुपा होता है संघर्ष का लंबा सफर। शायद इसी वजह से कवियों, गीतकारों और फिल्मकारों ने चेहरा शब्द को हमेशा अपनी गीतों और रचनाओं में खास जगह दी है। और अब इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म सागर से। आवाज है किशोर कुमार की, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत के बोल लिखा है जावेद अख्तर ने।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि चेहरे पर आने वाली भावनाओं से होती है। माँ के चेहरे पर ममता दिखाई देती है, पिता के चेहरे पर जिम्मेदारियाँ और किसी अपने के चेहरे पर भरोसा। जब कोई अपनों से दूर होता है तो सबसे ज़्यादा उसकी चेहरे की याद सताती है। हिंदी फिल्मों में भी प्रेम की गहराई को चेहरे के माध्यम से बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो आइए अब सुनिए एक ऐसा ही सदाबहार गीत जो मोहब्बत की उसी कशिश को बयां करता है जहाँ किसी एक चेहरे पे पूरी दुनिया नजर आने लगती है। आइए सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत दिया है खयाम ने और शब्द रचना है साहिल लुधियानवी की।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
0: चलिए बनाए एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।
3: चलते चलते
4: श्रोताओं, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग चेहरे पर मुस्कान तो रखते हैं लेकिन दिल की थकान छुपा लेते हैं। सोशल मीडिया के दौर में हर चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है मगर हर मुस्कान के पीछे खुशी हो ये जरूरी नहीं। ऐसे समय में ज़रूरत है कि हम चेहरे को नहीं भावनाओं को पढ़ना सीखें। कभी कभी किसी अनजान व्यक्ति की छोटी सी मुस्कान भी पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है। शायद इसी एहसास को गीतकार ने इन शब्दों में ढाला है, ये चांद सा रोशन चेहरा। आइए सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार हैं OP नैयर।

श्रोताओं, चेहरा केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि यादों का भी हिस्सा होता है। कुछ चेहरे समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन उनकी यादें कभी नहीं बदलती। बचपन का चेहरा, दोस्तों का चेहरा या किसी खास इंसान का चेहरा, ये सब जिंदगी की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। और अब यादों और भावनाओं से भरा एक और गीत सुनते हैं। ये गीत रिश्तों की उसी मिठास को महसूस कराता है जो दिल को छू जाती है। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में धर्मात्मा फिल्म का ये प्यारा सा गीत। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और शब्द रचना है इंदिवर की।

दोस्तों, जीवन में सबसे खूबसूरत चेहरा वही होता है जिस पर सच्चाई और अपनापन दिखाई दे। इंसान की असली सुंदरता उसके व्यवहार और उसके दिल में बसती है। अगर चेहरे पर मुस्कान हो और मन में स्नेह, तो वही चेहरा दूसरों के लिए भी उम्मीद बन जाता है। इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म सूरत से। संगीत शंकर जयकिशन की और गीत हसरत जयपुरी की।

इसी के साथ बस इतना ही कहना चाहूंगी। श्रोताओं के चेहरा केवल एक रूप नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा है। कोशिश कीजिए कि आपके चेहरे की मुस्कान किसी और की खुशी की वजह बन सके। इसी के साथ कार्यक्रम चयन के आज के अंक में बस इतना ही।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: सामयिक सुझाव का विषय है गर्मी की जुताई से लाभ।
1: गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई कृषि का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे ग्रीष्मकालीन जुताई भी कहा जाता है। किसान यदि कटाई के बाद गर्मियों में खेत की अच्छी जुताई करते हैं तो इससे मिट्टी, फसल और उत्पादन तीनों को लाभ मिलता है। गर्मी के समय तेज धूप पड़ती है, जब खेत की मिट्टी पलटकर ऊपर आती है तब सूर्य की गर्मी में छिपे कीट, रोगाणु और खरपतवार के बीजों को नष्ट करने में मदद मिलती है। गहरी जुताई से मिट्टी में छिपे कीड़ों के अंडे, लार्वा, दीमक, फफूंद और रोगाणु धूप के संपर्क में आकर नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार के बीज मिट्टी के बाहर आ जाते हैं, तेज धूप में सूखकर नष्ट हो जाते हैं। इससे खेत साफ रहता है और फसल को पोषक तत्व अधिक मिलते हैं। जुताई से मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, जिससे हवा का संचार बढ़ता है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी पानी को अधिक मात्रा में सोखती है, बरसात का पानी खेत में रुकता है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है। जुताई से फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं, जो सड़कर जैविक खाद का रूप ले लेते हैं और खरीफ की फसल के लिए बेहद लाभदायक साबित होते हैं। इससे मिट्टी बेहद उपजाऊ बनती है। लगातार सिंचाई और खेती से मिट्टी की कठोर परत बन जाती है, किंतु गहरी जुताई इससे तोड़ती है, जिससे जड़ों का विकास भी बेहतर हो जाता है। गर्मी की जुताई से खेत समतल और साफ हो जाता है, जिससे बुआई आसानी से होती है और बीज का अंकुरण भी अच्छा होता है। मिट्टी अधिक गीली ना हो, दोपहर की तेज धूप वाले के समय जुताई अधिक लाभकारी होती है। मिट्टी पलटने वाले हल या रोटावेटर का उपयोग करना चाहिए, जिससे जुताई अच्छी हो और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। जुताई के बाद खेत कुछ दिनों तक खुला छोड़ देना चाहिए। दोबारा जुताई के लिए एक समय निर्धारित करनी चाहिए। गर्मी की जुताई विशेष रूप से धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। गर्मी में खेत की जुताई कम लागत वाला लेकिन अत्यंत लाभकारी कृषि कार्य होता है। इस समय किसान खेतों की जुताई करने में लगे भी हैं। इससे कीट नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी सुधार और जल संरक्षण जैसे अनेक फायदे मिलते हैं, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है और किसानों की आय में भी सुधार होता है। गर्मी में खेत की जुताई के लिए यंत्रों का भी उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। गर्मी की जुताई का मुख्य उद्देश्य मिट्टी को भुरभुरी बनाना, कीट रोग खरपतवार नष्ट करना, वर्षा जल संरक्षण करना होता है। इसके लिए सही कृषि यंत्र और सही समय बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मिट्टी पलटने वाले हल का उपयोग करना चाहिए, ताकि नीचे की मिट्टी की परत ऊपर आ जाए और ऊपरी परत नीचे चला जाए। कीट, अंडे और खरपतवार धूप में नष्ट हो जाएं। कठोर परत टूटनी चाहिए, ताकि खेत भुरभुरी हो और वर्षा जल को संरक्षित कर सके। गर्मी की पहली जुताई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है अप्रैल और मई माह की जुताई। डिस्क हैरो से मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है, खेत समतल बनता है, नमी संरक्षण में मदद मिलती है। एमबी प्लाउ से दूसरी बार जुताई काफ़ी उपयोगी मानी जाती है, इसलिए एमबी प्लाउ का भी उपयोग करना चाहिए। कल्टीवेटर का उपयोग करना चाहिए, ताकि हल्की और मध्यम जुताई के लिए इसे बेहद अच्छा माना जाता है और गहरी जुताई भी इससे होती है। खरपतवार नियंत्रण में कल्टीवेटर की जुताई बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कम खर्चे में अच्छी जुताई करती है और दो तीन बार अगर इसे चला दिया जाए तो मिट्टी पूरी तरह भुरभुरी हो जाती है।
0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। सामयिक सुझाव का विषय था गर्मी की जुताई से लाभ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 होने को है। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहीन कि हमन खाली खड़े होके पानी ला घूर के और समुद्र पार नहीं करे सकत हन। ये सुघर विचार कर संगे घर गोसाइन कार्यक्रम में जम्मो सुनैया संगी मन कर स्वागत आ है। आज संगे रही रमा बहिन, जय जोहार, राम राम। देखी संगी हो, सही गोठा है कि कोनो भी काम ला हमन देखब कि खड़े होए कि और खाली हमन दिख देख के कर ढारब तो ऐसे नहीं होए। भाई बहनी मना है चाउर ला रख दी है और सोची कि हमार चाउर हर मस्त उबल जाए और पकियो जाए और पैसा ये लेह बोला तो नहीं होही। अब हमार भैया मन सोची हल ला धर के चाहे ट्रैक्टर ला धर के कि भाई खेत कति हमन मढ़ाए देवो और अपन खेत हर जोताए जाही, तो ऐसे नहीं हुए। कोनो भी काम जो हमन ला करना है तो ओमे हमन ला लगना पड़ेल और हमन कति ना कि कर्म जो है हमार वो सब ले बढ़ के आए। तो सही चीज है कि कोनो भी चीज में जब हमन जुट थी, जब हमन कोशिश करती तबे वो चीज़ आहे और वो चीज़ हो सकता है। ऐसने देखी बहुत सारा ऐसा योजना आ है हमारे सरकार कर कि जेकर बारे में हमन जागरूक रहब तबे ओहर हमन ला पता चलही। आ प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना देखी कितना बढ़िया ये मातृवंदन योजना है हमार बहनी मन बर। और ये योजना ला हमार बहनी मन ला देख के चलाइन है और जो हमार गर्भवती बहनी मना है और स्तनपान कराए वाली बहनी मना है उमन बर ये योजना खास करके आ है। हमन देखत रहन कि भाई जो बहनी मना है गांव गए के खान पान सबे जात देखब कि उतना तिहार नहीं करें, अपन खेती बाड़ी घर द्वार सबे में लगे रहते हैं। आओ बिहाने ले भाई झाड़ू बुहारू करके सबले पहले तो हाथे में देखिया कि झाड़ूए रहल, आओ झाड़ू बुहारू करके लिपाई पुताई करके आवतेकर अपन खान पान ला देखते हैं। तो इमें कितना धार ऐसे हो जाए कि जब लड़का मन होते हैं तो वो समय बहनी मन में खून के बहुत ज़्यादा कमी हो जाए और जो स्तनपान कराए वाली बहनी मना है तो लड़का मन भी उतना अच्छा भाई दूध भी उमन में नहीं होल कि लड़का मन बढ़िया पोषण वाला भेटाए सके और ऐसने में लड़का मन का हो जाते हैं कुपोषित हो जाते हैं और पेटे रहे थे तो भाई बढ़िया खाए पिए भी नहीं, तो ऐसन में भी उमन ला बहुत परेशानी हो जाए और लड़का मन को पोषित हो जाते हैं। तो एक बार बहुत प्रयास करल गई सा है हमारे आंगनबाड़ी के माध्यम से भी बहुत सारा योजना चलाल जाते। गर्भवती बहनी मन भी देखता है कि भाई उमन बर कितना योजना चलता है। तो एक तो हमन ला आंगनबाड़ी में भी जाके पता करना है हमन बर का का भेटाता है, सबे जात पौष्टिक चीज़ भेटाता है दलिया और भाई आयरन की कमी हो जाए जेकर चलते ही जो खून की कमी हो जाए बहनी मन में ओकर बर भी बहुत सारा चीज़ भेट आता है। तो हमार बहनी मन जा सकता है और ये सब चीज़ के लाभ ले सकता है। अब जो हमारे मातृवंदन योजना आ है तो एकर उद्देश्य भी यही आ है कि जो बहनी मना है उमन के स्वास्थ्य में सुधार हो सके, संगे संगे जो लड़का मना है नान लड़का मन तो उमन के भी स्वास्थ्य में सुधार हो और आर्थिक मदद में भेटायल बहनी मनला। तो ये जैसे मदद है तो ये हमन सुरक्षा भी कह सकते हैं कि आर्थिक सुरक्षा एक ठो मनला मिलता है उमन कर स्वास्थ्य पर। तो वही बहनी मनला यहर भेटाता है कि जो कोनो सरकारी जगह में चाहे सार्वजनिक जगह में नियमित रूप से काम नहीं करता है तो ऐसा बहनी मनला ये सुविधा भेटाता है। तो कोशिश करी बहनी मन की भाई अपन घर में भी जो खान पान हमन कर थी ओला हमार नियमित रहे और लड़का मन कर पूरा हमन त्याग के जब हमार पेटे लड़का मन रहते तो वो समय भी हमन ला देखना है कि हमार खान पान बढ़िया रहे पौष्टिक रहे। ऐसा नहीं आए कि बहुत ज़्यादा पैसा रुपया खर्चा करके हमन हमेशा ये गोइठला बोलती कि बहुत ज़्यादा पैसा रुपया खर्चा करके हमन ला पौष्टिकता नहीं भेटा सकता है। हमार जग बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जेकर माध्यम से हमार जो शरीर में खून के कमी होते वो सब चीज़ पूरा हो सकता है। हमार बाड़ी में कितना भाजिया है ओला हमन उगा सकती और बिना रासायनिक खाद वाद के उपयोग करे बिना बढ़िया भाजी मन उग जाते हैं। हमार गाँव गाँव में तो इंदारा रहल इंदारा धरी तुम्हारे उगाए रहते हैं भाजी वाजी और भाई पानी के भी परेशानी नहीं हुए। तो ऐसे में सब कतिले हमर जग सुविधा है, बस हमन ला सोचना है।

0: कि हमन अपन हाथ से अपन करने से कितना हमार अच्छा करे सकत ही। तो अजय आगू और गुड बात करब ये संदेश है लेगी सुनी।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: हाँ तो संदेश लहान सुनत रहे न। अब हमार संगी मन भाई गुड बात ला सुनत रहते हैं संगे संगे भाई लोकगीत ला भी सोचत रहते हैं। तो आज आबे करी हमार लोकगीत तो ये हमारे एक ठन छत्तीसगढ़ी लोकगीत है तो लेगी सुनी ते कर आगू बढ़।

0: हाउ ए बढ़िया हमन छत्तीसगढ़ी गीत सुनत रहन धुरवा राम मरकाम और संगता कर गाल रहीस। अब देखिए हमार आज रहे एक ठन क्रम बहनी कर कहनी है में हमार बहनी मंजूर रथ हैं जो अपन काम करत रथ हैं और ओकर माध्यम से बढ़िया मेहनत करके आगू बढ़त रथ हैं और ओला देख के हमार बहनी मन भी सीखत रथ हैं और सुनत रथ हैं तो कैसे कैसे ओमन भाई ओमन कर काम चली सा है और का ओमन करे सकता है ओकर ले सीख के तो एला सुन के हमार ढेरे कन बहनी मन आगू बाढ़ी ना हैं और बढ़त भी हैं तो इसने आज हमार किस्मतिया बहन गोट बात करे रहन शांति देवी राजवाड़े बहन जग जो कि एक ठो प्रगतिशील किसान बहिना है तो लेगी इनकर ले एक गोट बात सुनी।
1: बहनी हो बहनी कर कहनी कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए आज मैं कंठी ग्राम आए हूँ और यहाँ एक जन बहन जग मुलाकात हुई और भैर उनकर कहानी ला सुने संगे संगे देखी उनकर जो काम बुता वाला देख के भाई मन है प्रफुल्लित होगीस और लगीस कि हमारी ये बहन कर कहानी जो है हमारे बाकी बहनी मन ला भी सुनाना बहुत जरूरी है कहे कि सुनकर इनकर से एक बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत है। तो भाई इनकर परिचय इनकरे से ले आती राम राम बहन।
2: राम राम दीदी।
1: का नाम है राउर?
2: मोर नाम शांति देवी राजवाड़े है दीदी।
1: शांति देवी राजवाड़े बहन देखी आप मन ला बता दूं कि ये कंठी ग्राम कर एक प्रगतिशील किसान बनना है और मैं अभी इनकर घर जब आए रहे हैं तो चारों गति भूल के देखत रहे मने मैं का बताऊं अतेक बढ़िया सुगर खेती करीना है चारों तरफ बढ़िया सब साग भाजी मनला भी लगाईना है खीरा कर बड़ा सुंदर खेती होता है और संगे संगे डबरी निर्माण करके रखी ना मने मैं ये कहना चाहूँ कि एक जो प्रगतिशील किसान का जो झलक देखे पर भेटाही वो हमार शांति बहन जग मुकेला पूरा पूरा मिलीस और अब इनकर से गोट बात करत थी और जानत है कि धीरे धीरे ये आगू बढ़ी नहीं तो कैसे बढ़ी। तो शांति बहन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ कि का शुरू से खेती बाड़ी के प्रति रुझान रही आप खेती बाड़ी में आए के विषय में कैसे सोचा और एक प्रगतिशील किसान बने के प्रयास कैसे करा अपन कहानी शुरू से बतावा।
2: दीदी मैं तो पहले खेती बाड़ी के बारे में नहीं सोचे रहे लेकिन जब मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी तो वहाँ से मेरे को जगह जगह ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिलते गया तो उस समय
1: रवि स्वयं सहायता समूह का गोट कहा था स्वयं सहायता समूह से भी जुड़े हैं।
2: हाँ स्वयं सहायता समूह में भी मैं जुड़े हूँ।
1: हाँ
2: और उन्हें जुड़ के ही मुझे ज्ञान मिली कि खेती बाड़ी के साथ साथ हम आगे बढ़े जा सकते हैं तो मैं वही फिर वहाँ से प्रशिक्षण लेके ही खेती बाड़ी ला शुरू करे जिमे कि मोर पति बाजार करत रही तब मुझे बहुत अच्छा से ज्ञान मिलीस कि सब्जी भाजी ला ले जाही बेचे पर जब मैं उगाहूँ तो यही ला सोच के मैं सब्जी भाजी ला करे बाउर करें और जब करे बाउर करें तब मुझे धीरे धीरे ले ये भी ज्ञान मिलीस कि सब्जी भाजी के साथ साथ का करना चाहिए ओकर प्रति मैं सोचत गए तो बीच में इसे मनरेगा के तहत डबरी का निर्माण करे बहु आईस तो गाँव में पंचायत में पूछी कि डबरी कराना है तो हमन मोर ससुर के नाम से डबरी कराए बा दे दे जमीन मोर घर के पास में है जमीन मतलब डबरी डबरी में भी मछली पालन का भी उत्पादन करता हूँ और साथे साथे सब्जी भाजी और मछली पालन भी चलता है।
1: अच्छा शांति बहन ये बताए कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े रहा तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ के सीखे है तू कौन सा स्वयं सहायता समूह रही सकते
2: मोर समूह का नाम है ओम शांति महिला स्वयं सहायता समूह दीदी रामकंठी में मतलब फर्स्ट बार ही मतलब गांव में तो और समूह जुड़े रहे लेकिन मोर निकल के गई से गांव से अलग निकल के हट के ही दिखा थे मोर समूह।
1: अच्छा माने तुमन कितना जन जुड़े हैं?
2: 10 जन हैं दीदी।
1: तो सब जन कुछ ना कुछ बूता करते
2: हैं? सब जन कुछ ना कुछ करते हैं कोई भिंडी का खेती करते हैं कोई टमाटर का खेती करते हैं अभी खेती के बारे में कोई ला देखिएगा तो मक्का का खेती रास्ता में दिखी सो ही आप मलाए हुए लेता मक्का का खेती देखी सोई भिंडी का खेती देखी सोई कोई लौकी का खेती लगाई नहीं अलग अलग सब कोई लगाई नहीं अपन तरीके
1: मतलब तो सब समूह से जुड़ के ही काम माना सीखे
2: सब कोई समूह से जुड़ के हमन आपस में चर्चा करथन दीदी जब भी बैठक हुए तभी हमन ओकर पर चर्चा करथन की दीदी तय ए बार का खेती करबे तो कोई आपस में बताएल अपन के जो ज्ञान रहे हमन एक दूसरे से शेयर करथन।

0: मोर साथे साथे सबको आगे
1: सब
0: बढ़े।
1: जन आगे बढ़े, मैंने सब जन ला संगे लेके चला था, समूह के सब बहन मन मिलजुल के काम करता
0: हाँ,
1: नहीं।
0: मिलके जुड़ा था। देखिए दीदी, उस समय हम लोग का गांव में 5 समूह था। देखिए आज देखिएगा तो 24 से 25 समूह बने हैं। और सबको यही उदाहरण देते कभी कभी कि शांति दीदी ला देखा कितना अपन घर परिवार ला आगे लेके चली से, अपन घर ला कच्चा का घर रही सो ला पक्का का रहे अभी बनाए चुकी सही। एक से एक दूसरे ला प्रेरणा मिला थे गाँव में।
1: तो देखिए बहनी हो, कितना सुगर बात है कि हमारे शांति बहन जो है एक प्रेरणा के स्रोत बन गई रहे अपन गांव में और समूह से जुड़ के ही आगू बढ़ाता है। शांति बहन मैं पूछना चाहूँ कि अपन शुरू से कहानी बताओ कि कैसे कैसे तू करे है ऐला, कैसे जुड़ा और समूह से कैसे जुड़ा, परिवार में पहले स्थिति का रही, ये सब चीज़ बात ला हमारे बहनी मन ला
0: दीदी,
1: बतावा।
0: हमारा पहले तो हमन मन ढेरे गरीबी परिवार से रहन, लेकिन मोर सास ससुर और एक देवर रही और हमन पति पत्नी रहन, इतना आदमी रहन हमन मन। तो जैसे गरीबी स्थिति से जुलेन तो हमन ला थोड़ा सा गरीबी से ऊपर उठे का सोचे ना अपन दिमाग में। जब तक सोचेंगे नहीं सोचते तो आगे कहाँ से
1: कहाँ
0: बढ़ेंगे,
1: से बढ़ते
0: इसीलिए
1: हो?
0: हमन सोचे तो सोचते। तो मेरा इसमें से मेरे पति का बहुत बड़ा
1: योगदान
0: हाथ
1: मिले से
0: है
1: है ना,
0: उनका, कि हर समय
1: साथ
0: मेरे को
1: दिन
0: साथ दीन है, कि हर जगह ले जाए बा, हर जगह जाए आए बा। ऐसे महिला और जैसे महिला मन जैसे मुके नहीं करीन। आओ गांव में देखा महिला मन घर ले बाहर ही नहीं जाए दें, लेकिन मुके हर जगह भेजें, हर ट्रेनिंग प्रशिक्षण में जाए का मौका मिले। तो वही जगह हमन मन सोचे नेला काम करे का। एक बाद में ना समूह में जुड़ के आगे हमन ला सक्रिय महिला का काम मिले। सक्रिय महिला का काम करते करते गांव में समूह बनाए का मौका मिले। ओकर बाद गांव में अलग गांव में भी समूह बनाए का मौका मिले, सो भी मैं जाए जाए के बुलाएं, जिनमें कि जनपद पंचायत से मुके सहयोग मिले कि नहीं गाँव गाँव में समूह बनाना है, उन्हें कुछ पैसा मिल जाए 200-400 रुपया पर डे का, वो भी मैं करें। एकर बाद में ना देखी समूह में जुड़ के मैं बहुत बड़ा मतलब मुके तो समूह ला बहुत बहुत मुके गर्व होल के समूह में जुड़े ना। आज मैं कंठी गांव में रह के एक उदाहरण बन गए
1: सही
0: ऐसे
1: बात
0: करके
1: है।
0: ना। आज हमार बहुत बड़ा एक सरगुजा जिला के नाम से एक महिला बिहान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनी से, उन्हें भी मैं चेयरमैन कपद में हूँ अभी।
1: वाह बहुत बढ़िया
0: और
1: बात।
0: उन्हें ले हमार 36 कला के नाम से एक ग्रोथ सेंटर खुले से, 36 कला के नाम से जगह जगह हमन अपन प्रोडक्ट ला सेलिंग कर रहे थे, जिनमें की ऑनलाइन भी जाते हैं अमेजोन के माध्यम से भी जाते
1: काका में भेजे तुम।
0: और 36 कला के नाम से हमार का कहते सरगुजा नेचुरल के नाम से हमार बिहान का प्रोडक्ट जाते हैं।
1: अच्छा तो क्या प्रोडक्ट बना था
0: उन्हें? सरसों के तेल है, जीरा फूल राइस है, हल्दी मिर्ची धनिया है और जैसे कि मल्टीग्रेन आटा है, सब चीज आटा है।
1: तो ये तुहर समूह में बना थे सब बना के
0: जैसे अलग अलग समूह में बनाए के हमार बिहान
1: महिला में
0: दूसर कंपनी
1: अच्छा।
0: में बेच के उहर सब जगह उहर डिस्ट्रीब्यूट हुआ थे। अभी जगह जगह देखिएगा स्टॉल लगे वो बिहान के नाम से, वो स्टॉल हमारे मन का हावे।
1: अच्छा देखिए कितना सुगर बात है कि जम्मो समूह कर जो बहनी बना है कंठी ग्राम में, मन अपन अपन जो उत्पादन होता है ओला जो है समूह से उत्पादित करके, चाहे अपन बसनली जो रहे सब सामान मन ला ले जाए के बिहान, बिहान का है ना,
0: बिहान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी है।
1: हाँ वही में देहा था
0: देहात है
1: और वोकर से जो है सब जगह जाते
0: जाते माध्यम से। और वही देखिए दीदी हमारे सरगुजा जिला का पूरा प्रोडक्ट भी वह जुड़ाता है।
1: अच्छा ठीक कहा था कि
0: गांव ला नहीं मतलब अदर समूह का भी जो बनाते ओकर भी सामान ला वहाँ लाए के हमन सेलिंग करता है।
1: तो ओमे अच्छा आपमन के बढ़िया लाभ होल।
0: हाँ दीदी
1: है ना
0: लाभ हुआ थे उन्हें लेहन। और भाई हमन कम से कम रेचुलर तो किसी दीदी या किसी किसान को दे पाते हैं, ताकि जो आज का केमिकल का जो सामान खाते हैं उन्हें ले अपन शरीर का हानि हुआ थे।
1: सही बात है,
0: रेचुलर खाही तो अपन शरीर ले भी अच्छा फायदा हो ही।
1: सही बात है,
0: ऐसा सोच के हमन मन ऐसा सब सोचे है ना। मेले भाई हमारे एनएलएम का टीम भी सहयोग करी से
1: अच्छा
0: और करत भी है
1: नहीं। तो देखिए बहनी हो, जब मन में उत्साह रहल, जोश रहल, कुछ करे के जज्बा रहल, तो देखिए आदमी कहीं भी कुछ भी काम ला करके और आगे बढ़ सकता है। शांति बहन मैं एक गोटा पूछना चाहूँ, और पढ़ाई लिखाई कितना हुई से है?
0: मोर दीदी जैसे रेवलल तो मैं 8वीं पढ़े रहे हैं, लेकिन अब ओपन में 12वीं तक ले पढ़ ले हैं।
1: अच्छा
0: अभी, अभी
1: बाद
0: अभी
1: में पढ़ाई करा?
0: हाँ बाद में 2023-24 में
1: अच्छा
0: कम्प्लीट करे हूँ 12वीं ला।
1: देखा इनका पढ़ाई भी 12वीं तक पढ़ डाले और संगे संग खेती बाड़ी भी करते हैं। शांति बहन बहुत सारा ऐसा बहनी मन रहते ना जे मन की भाई सोचते कि हमन गाँव में रहती तो का बुताला करी, खेती पानी कबो हो इस कबो नहीं हो इस कबो नुकसान भी हो जाए, मौसम के चलते भी परेशानी हो जाए। तो बहनी मन जैसे तू कहा कि 8वीं पढ़ रहा, कई तो बहनी मन पढ़ा लिखल भी नहीं रहते, ओमन बहुत हताश निराश हो जाते हैं कि हमन कैसे करी कि अपन आर्थिक स्थिति ल मजबूत बनाई। हमारे ऐसा बहनी मन बद का संदेश देना चाहिए?
0: दीदी मैं तो ओमन वही संदेश दे हूँ कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको आगे लेके चलिए, उसमें हताश होने का कोई जरूरत नहीं है, न पढ़ा लिखा का कोई जरूरत नहीं है, और मतलब उनका जो काम है काम लो, आगे बढ़ाए।

0: हिम्मत के साथ अपने घर परिवार को लेके आगे चलें,
1: लेके
0: ताकि
1: आगे चलें।
0: उनको मतलब हम लोग कहीं भी अगर मेरा उदाहरण देखना चाहें, मेरे बात को सुनना चाहें, उनको सुन के अच्छा लगे। मैं भी एक अनपढ़े जैसी थी, आठवीं पढ़ा लिखा को कोई पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं आज का डेट में, लेकिन वही महिला आज करके दिखाई हूँ। तो मेरे को तो भाई मेरे को ही देख के उन लोग आगे बढ़े, मेरे बात को सुन के आगे बढ़े, ताकि उनको अच्छा ज्ञान मिल जाए और एक सपोर्ट मिल जाए। और एनआरएल में आज बिहान जो है ना दीदी, बिहान सभी महिला को सशक्त बना दे रही है, लेकिन सरकार इतना हम लोग के लिए चाह रही है बिहान के लिए कि महिला पीछे ना हो, उन लोग अपना आत्मनिर्भर बने, अपना
1: लेकिन एक बार खुद में भी उत्साह होना
0: बहुत
1: जरूरी है। नहीं
0: और हिम्मत निहारना जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है, हिम्मत जरूरी है।
1: सही बात,
0: हिम्मत रहे तो धन कहीं से आ जाते हैं।
1: सही बात है भाई, मेहनत और हिम्मत दोनों चाहिए, है नहीं। अब जैसे आप भी कभी को खेती बाड़ी में देखा तो कि नगदे कन खीरा उरा लगाया, ये सब लाद वहीं बेच था कि बाजार भी लेच था?
0: बाजार में लेच था, मंडी है, मोर पति है मंडी भी चलाते हैं।
1: अच्छा,
0: बिहान के नाम से मंडी है।
1: अच्छा,
0: वही मंडी में जैसे ज्यादा मात्रा हो जाते थे वहाँ बेचते, कम रहते तो फुटकर बेचते।
1: अच्छा, अपन तुहर जो निजी कमाई हो जाए जो में जैसे वहाँ नहीं दिया था, तो लगभग तुमके का लगे की साल भर में तू ये खेती उती से कितना कमाई लेता?
0: खेती उती से दीदी जैसे धान और इसका मिला के मेरे को आमदनी की बात करूं तो 1 लाख से ऊपर हो जाता है।
1: हो जाए नहीं तो अब मतलब अब कभी कभी जैसे मौसम के भी परेशानी होल, खेती बाड़ी में कोई नुकसान हो जाए कोई कोई चीज में, तो अब ओकर से कोई मतलब हताश नहीं होता? नहीं
0: दीदी, ये तो कहते हैं होनी को कौन टाल सके, तो ऊपर वाला का खेल रहता है, जब चाहे जब मतलब उसमें भी हम लोग का भाई रहे थोड़ा मोड़ा, लेकिन उसके लिए हताश नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना
1: करते
0: चाहिए। एक
1: चाहिए।
0: बार घटा हुआ तो दूसरा बार हम लोग को मिल जाए। देखिए उदाहरण के लिए पिछले साल हम 16 से लेकर 23-24-32 तक ले खीरा बेचे, लेकिन आज का डेट में हम 4 रुपया 3 रुपया 2 रुपया 5 रुपया इस 17 में बेच रहे हैं, तो इसके लिए हताश होने क्या बात, अगले आए वाला सीजन में बढ़ जाएगा। अभी टमाटर के सीजन लगाने वाली नहीं टमाटर के लिए, तो देखते हैं बरसात के सीजन में उनका क्या रेट है।
1: सही बात है। तो देखी बहनी हो, हमार शांति बहन अतिक उत्साह के साथ जब वो काम मनला करता है और आगू बढ़ता है, और एक मिसाल बनीना है हमार कंठी ग्राम में, आओ बहनी मन के ला भी जोड़ता है और संगे संगे आगू बढ़त जाता है। देखी इनकर एक जो ये काम है एकर से लेकर इनके कई जगह सम्मानित भी करल गई है, और ये छोटे स्तर से जब बहुत परेशानी में रहीन ओकर बाद से धीरे धीरे आगू बढ़ना है। तो शांति बहन अतिक सुगर अकन गोट बात करे हमार संगे। एक बार मैं यही कहना चाहूँ कि जो हमार जितना बहनी मन है अपन कतिले हमार जम्मो बहनी मनला का संदेश दिया, और समूह के बारे में भी बोल के बतावा जम्मो बहनी मनला कैसे जुड़ के आगू बढ़ सकता है, और जितना श्रोता बहनी मन सुनता है जमन आज थोड़ा परेशान रहते चाहे सोचते कि कहाँ से कैसे करी, तो उमन बर एक छोटा सा संदेश देता।
0: दीदी मैं तो सभी दीदी को यही बोलना चाहूंगी, सभी किसान को यही बोलना चाहूंगी, हमारे छोटे किसान दुखी ना हो, अपना जो भी काम है छोटे से लेकर ही बड़े बनते हैं हम लोग, आज छोटे छोटे कर्तव्य करके आगे बढ़े हैं, तो उस काम को उन लोग आगे लेके चले और बहुत अच्छा से सोच विचार को रख के चले, ताकि अपने आर्थिक स्थिति को सुधार पाए, अपने घर परिवार को सुधार पाए। और मेरे बात जहां तक ले सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं उन लोग मेरे बातों को अमल करें, ये ना सोचे कि एक कोई बहाना बाजी है, कोई बहानाबाजी नहीं है, रियल घटना है। आप छोटे से ही मैं बड़े बनी हूँ आज, और छोटे से ही मेरे को आज जान रहे हैं। देखिए सरगुजा जिला नहीं पूरे छत्तीसगढ़ अभी जानती है, कभी मैं रायपुर जाती हूँ कभी दिल्ली भी चले जाती हूँ अपने बातों को रखने के लिए। तो मेरा कहना है कि भाई उन लोग हताश ना हो, अपने खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी को लेके चले, अपने घर का कोई छोटे मोटे आजीविका है उसको लेके चले, हमारे स्वयं सहायता समूह में हर दीदी जुड़े, ताकि हर दीदी हमारे समूह की योजना का लाभ ले, जैसे MCP हो, RF हो और बैंक लिंकेज हो, ये सभी में जुड़े ताकि अपने आर्थिक स्थिति जुड़ पाए और सभी दीदी लखपति बने। सरकार का अभी मिशन चल रही कि सभी दीदी को लखपति बनाना है, हर घर में लखपति बने, यही मेरा संदेश है दीदी।
1: बहुत सुगर कम गुड बात करीन देखी हमार शांति बहन, और इनकर गोटला सुन के आप मनला समझ में आ गई सो है कि कितना ये उत्साह पूर्ण है और कितना बढ़िया मेहनत करके आगे बढ़ता है, और आप मनला भी यही संदेश देना है। तो शांति बहन हमार से अतिक सुगर अकन गोट बात करे बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखिए बहुत बढ़िया एगो एक बात हुई, सब बहुत अच्छा हमार बहन बताइन कि भाई कैसे कैसे काम ला करीना है और आगू बढ़ीना है हमार शांति बहन। और ये सब चीज में एक ठन और चीज आते कि जैसे हमन काम बोता करे थी तो हमार काम के थोड़ा सा भाग हमन ला बचाना भी चाहिए। हमन देखती कि लड़का मन भाई गुल्लक में, जैसे हम ही मन लड़का रहें तो गुल्लक में हमन थोड़ा थोड़ा सिक्का ला डालत जात रहें, जैसे जैसे हमन ला मिले तो आधा ला खर्चा करी आधा ला में डालत रहें। तो ऐसने घर के हर सदस्य ला चाहिए कि हमन ला थोड़ा सा बचत जरूर करना चाहिए।

बल्कि जब हमार परेशानी कर कुछ समय आयल तो ऐसे में बचत हमार बढ़ियन रहल। अब आजकल लड़का मन कोनो कोनो चीज़ में ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, चाहे तो जैसे मोबाइल में खेलता है तो गेम में चाहे में ओमे मारे कहत रहते हैं, तो ये सब चीज़ ले ओमला हमन ला समझाना है और जो चीज़ ज़रूरत के है वो चीज़ में हम लतिहा करना है। और हमार घर के बड़े मन हमन करब कि हमन बचत करत ही तो लड़का मन भी देख के जरूर सीखी। अब एक जाए तो वह है कि देखिए आजकल हमन बहुत सुनत ही कोनो वायरस ये वायरस फैलत है वो वायरस फैलत है जे हंता वायरस ला हमन सुनत रहन, तो देखिए बहुत सारा चीज़ ला सुन के हमन ला करना है कि साफ सफाई हमन ला जरूर रखना है, काबर कि यही हमन ला बचा सकता है कोनो बीमारी ले। ये जो हंता वायरस आ है एहर का है चूहा कर गंदगी से फैलेल, तो हमन ला अपन घर में भी पूरा साफ सफाई आजकल देखेगी चूहा छछुंदर और ये सब आजकल का पहले से हर देखब के घर में मारे है, बाकी आजकल देखब कि कम हो जाते हैं काबर कि सब जे अपन साफ सफाई ला करते हैं घर में, तो एला भी देखना है कि साफ सफाई और मन ला हटाए कैसे एकर बर भी बहुत सारा उपाय आवता है, तो ओला भी हमन करके अब अपन स्वस्थ रहे बर देखिए कि घर में कुछ भी खाना पीना है तो ओला हमन ला खुला नहीं रखना है और सब जगह में कहों कहों सामान भर के रखे रहती तो वो जगह ला भी हमन ला नियमित रूप से साफ सफाई करते रहना है। और हमार रेडियो कर माध्यम से भी बेरा कर बेरा में हर चीज़ की जानकारी भेटात रहते, तो बस हमन ला जागरूक रहना है और साफ सफाई करते रहना है। देखिए थोड़कुन बेरा बाची सा है तो एक ठन गीता है हमारे तो लेगी सुनी।

बढ़िया हमन भोजपुरी गीत सुनत रहन राम लल्लू पांडे कर गाल रहिस। तो एकर संगे संगे हमर जाय कर बेरा भी होता है घर गोसाइन ले। तो बस चला चलत यही कहब कि साफ सफाई घरे भी रखी बाहरे भी रखी और सब कति हमन साफ सफाई रखब तो सब्बे जन स्वस्थ रहब। आज रमा पहिन यहीं चलत है, फिर भेटबो। राम राम, जय जोहार।

सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

कार्यक्रम में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो साथी धरती। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद में से। संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने, और शब्द रचना है इंदिवर की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां, लोडमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय संध्या और शिवम कोलाम, ग्राम लसुडिया नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र दांगी, गांव जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, रघुबीर नगर नई दिल्ली से श्रुति और किरण, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुपचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मूली क्षत्रिय, सरोचक अमरावती से कमरुला ठेकेदार नसीम बेगम, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान फरहान, समक आजमीन कुड़िया, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम सुरलकर। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर यह प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज में चोर मचाए शोर फिल्म का ये गीत। संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और शब्द रचना है इंद्रजीत सिंह तुलसी की।

0: जाएंगे तो हम आएंगे ससुर जी
1: जाएंगे
0: ले जाएंगे।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म आ गले लग जा का ये गीत, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन की और शब्द रचना है साहिल लुधियानवी की। इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश हमें की है कृष्णा पाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा सिटी दीवाना, जैन मंदिर गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नरसिन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, स्टेट बैंक नगर पश्चिम विहार नई दिल्ली से लव शर्मा और रोशनी शर्मा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केशु दासु, अर्णवानंद सत्यमानंद, बोड़ागाशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गोटी भगत, डेढ़ पाटन गुजरात से धीरज बी रबारी, बिरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर, सारसताल सोनगढ़ जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार और राम खिलावन सिंह पैकरा, खड़की अकोला से रितेश तिवारी, अनुष्का तिवारी, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, कुंभारगढ़ी श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी दले, ऋषिकेश और जीविका दले, पुनावली पुणे से संजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा सोनवने, रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, पिट्टू कुमार और उनके साथी साथी परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर यह अगला गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ शेख, नलेश्वर डगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर, तिलक नगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला, गंगानगर शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद यूपी से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि और आर्यन साथ ही उनके सभी साथीगण, जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से स्वरूप आनंद सरजल, सरोज स्वप्ना सरजल और अमन आयुष सरजल, अकोला से शरद पांचपुर, श्रीमती शोभा पांचपुर, बेबी वैदेही, विहान बाबू, रश्मि अक्षय और अभिनव पांचपुर, मिनिस्ट्री रोड कीर्तिनगर नई दिल्ली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से मानसी अनिल कविता गौरव अरोरा और परिवार के सभी सदस्य, रजौरी कांड नई दिल्ली से ध्वनि और सहानवी, पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन, ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। आप सभी सुनना चाहते हैं ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत, आवाज़ है मुकेश की, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अब पेश है कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में समीर का लिखा ये गीत। संगीत दिया है नदीम शवर ने, फिल्म का नाम है दीवाना। इस गीत के फरमाइश करता है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर और कुशल शाह, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, मन्नत गुरकीरत राहुल और कुशब्द राहुल, जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन, उत्तम नगर नई दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, कितिका खोरवाल और भानु प्रकाश, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरभ, शायना और मैंडी शर्मा, दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, अकलतरा से दिलीप चंदन, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम के अंत में पेश है एसटी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा फिल्म अभिमान का ये गीत, आवाज है लता मंगेशकर और मनहर उदास की। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ग्राम सिद्मा बाजारपाला जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह और निषाद परिवार के सभी सदस्य। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालकिली गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। गांव हंडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती।

पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव, बेबी सिया यादव, जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता यादव, होम यादव, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता यादव। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य। मारहरा दरवाजा एटा से नसीब हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, सुहैल हसन अब्बासी, रशीद वारसी, शहनाज अब्बासी और नवेद हसन अब्बासी। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के

0: मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्र में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम

0: मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन

0: क्लीन होगा, हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस्ताद सुल्तान खान और श्रेया घोषाल की गायस गीत के साथ। संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार सानू की आवाज में ये गीत। संगीत दिया है शिबू पिंटू ने, गीत है नुसरत पत्र की लिखी हुई।

कार्यक्रम के अंत में पेश है स्टेबन बैन की आवाज में ये गीत, संगीत पीयूष शंकर की और गीत अभिन्द्र कुमार उपाध्याय की।

स्टेबन बर्न के गाइस गीत के साथ कार्यक्रम गीत गंधा में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। सभा समाप्ति से पूर्व आइए एक नजर डालें आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय है शाम 5:30। शाम 6:05 पर आप सुन सकेंगे विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। लोकगीत के कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कुछ छत्तीसगढ़ी और सरगुजिया लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुनते हैं शाम 6:30 पर। शाम 7:05 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर, जिसमें सामूहिक चर्चा का विषय होगा वैज्ञानिक शोध और नवाचार से रोग मुक्त भविष्य की ओर बढ़ते कदम, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और हरित भारत अभियान। रात 8 बजे हम लेकर

कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर, जिसमें सामूहिक चर्चा का विषय होगा वैज्ञानिक शोध और नवाचार से रोग मुक्त भविष्य की ओर बढ़ते कदम, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और हरित भारत अभियान। रात 8:00 हम लेकर आएंगे सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात 9:30 पर आप सभी सुन सकेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी और रात 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3:03 होने को है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आज शाम 5:00 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गुट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धुरिया अरचोक

का भेलकक्ष पिंडारी बोधरई शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बोझा, मायापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवाखाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गांव, बोड़ाझरिया, घासीडी, घड़गांव, बैगहवा, बरडांड, कंडराजा, चोरकी, पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन

0: आओ बोड़ाझरिया घासीडी घड़गांव बैगहवा बैडाण कंडराजा चोरकी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो हस्तिनापुर खड़ा माचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 129 है। ये गिरसा पोटिया आमगांव रुपुंगा तेजपुर बेहरामार बनहर अवरानारा पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा गिरारी गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर डंग बोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया नवागांव चक्रधरपुर जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी नवापारा सरायपाली गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत कोठारी गुड़ागढ़ फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:06 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुलवंत सोम की लिखी इस रचना के साथ। स्वर है मृत्युंजय का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन।

कार्यक्रम भजन संध्या में आप सुनिए वंदना सिन्हा और भैरवी रंजन की आवाज में ये भजन। शब्द रचना है वंदना सिन्हा के और संगीत है मकरंद कदम के।

श्रोताओं, कार्यक्रम भजन संध्या में आप सुनिए अनूप जलोटर के स्वर में ये भजन। शब्द रचना है पंडित किरण मिश्रा के और संगीत है शंख नील का।

कार्यक्रम भजन संध्या के अंत में सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ये भजन। फिल्म का नाम है आदि पुरुष।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ कार्यक्रम भजन संध्या आज यहीं तक। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 होने को है। पेश है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

दुनिया में हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ सदियाँ बंद अलमारियों में रखी होती हैं, जहाँ बीते हुए लोगों की परछाइयाँ आज भी मौजूद हैं और जहाँ खामोशी सबसे ज़्यादा बोलती है। वो जगह है म्यूज़ियम। जी हाँ, म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ चीज़ें सिर्फ रखी नहीं होती बल्कि हर चीज़ के पीछे छिपी होती है एक कहानी, एक राज, एक अधूरी दास्तान। दोस्तों, क्या आपने कभी म्यूज़ियम में घूमते हुए महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि वो चीज़ जो कांच के पीछे रखी होती है। एक पुरानी तलवार, एक टूटी हुई मूर्ति, एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी, ये सब सिर्फ वस्तु नहीं है, ये समय के गवाह हैं। सोचिए, एक सैनिक की तलवार जिसने आखिरी बार युद्ध में चमक कर अपने मालिक को बचाने की कोशिश की होगी। इंडिया में हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ सदियाँ बंद अलमारियों में रखी होती हैं, जहाँ बीते हुए लोगों की परछाइयाँ आज भी मौजूद हैं और जहाँ खामोशी सबसे ज़्यादा बोलती है। वो जगह है म्यूज़ियम। जी हाँ, म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ चीज़ें सिर्फ रखी नहीं होती बल्कि हर चीज़ के पीछे छिपी होती है एक कहानी, एक राज, एक अधूरी दास्तान। दोस्तों, क्या आपने कभी म्यूज़ियम में घूमते हुए महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि वो चीज़ जो कांच के पीछे रखी होती है। एक पुरानी तलवार, एक टूटी हुई मूर्ति, एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी, ये सब सिर्फ वस्तु नहीं है, ये समय के गवाह हैं। सोचिए, एक सैनिक की तलवार जिसने आखिरी बार युद्ध में चमक कर अपने मालिक को बचाने की कोशिश की होगी।

थी अपने माँ के नाम। उसमें लिखा था, माँ मैं जल्दी लौटूंगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। चिट्ठी युद्ध के मैदान से मिली और आज कांच के पीछे रखी हुई है। हर दिन हजारों लोग उसे देखते हैं, लेकिन उस माँ को वो चिट्ठी कभी नहीं मिली। दोस्तों, इतिहास सिर्फ जीत की कहानियाँ नहीं है, इतिहास अधूरे वादों की भी कहानी है। दोस्तों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हम सिर्फ जीत देखते हैं। राजा जीता, साम्राज्य बना, युद्ध जीता गया, लेकिन म्यूजियम हमें सच्चाई दिखाता है। आज के डिजिटल युग में सब कुछ फ़ोन में है, फोटो, वीडियो, यादें। फिर म्यूजियम क्यों जरूरी है? क्योंकि फ़ोन में तस्वीरें होती हैं, म्यूजियम में एहसास होते हैं। जब आप किसी 500 साल पुरानी चीज़ को देखते हैं, तो आपको एहसास होता है हम इतिहास का हिस्सा हैं। हम आज जो जी रहे हैं, कल वही किसी म्यूजियम में रखा जाएगा, और शायद भविष्य का कोई इंसान हमें देखकर कहेगा, ये लोग ऐसे जीते थे। दोस्तों, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास को बचा कर रखें, क्योंकि हमारा इतिहास ही हमारी पहचान है। तो दोस्तों, आज की चर्चा बस यहीं तक। अब आइए सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बाजीराव मस्तानी से, जिसमें आवाज़ है अरिजीत सिंह।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: चलते हैं दोस्तों हमारे प्रश्नों पर आधारित क्रम इंद्रधनुष में।

स्वागत है दोस्तों आपका क्रम इंद्रधनुष में। और सबसे पहले मैं आपको हमारे पिछले कड़ी क्रमांक 71 में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब बता देती हूँ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न था, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है, जिसका सही जवाब है राइफल शूटिंग से। हमारा दूसरा प्रश्न था, पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, जिसका सही जवाब है पंजाब। हमारा तीसरा प्रश्न था, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, जिसका सही जवाब है कोलकाता। हमारा चौथा प्रश्न था, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 7 मई। दोस्तों पांचवें प्रश्न के रूप में हमने आपको सुनवाया था इस गीत के कुछ अंश, जिसमें आपको बताना था इस गीत के फिल्म का नाम।

दोस्तों इसका सही जवाब है फिल्म फैंटम। दोस्तों अब मैं आप सभी को हमारे कड़ी क्रमांक 72 के प्रश्न बता देती हूँ, जिसे आप सभी लिख लें, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी। प्रश्न एक बार फिर से, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। प्रश्न एक बार फिर से, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। प्रश्न एक बार फिर से, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। हमारा चौथा प्रश्न है, रामायण में इंद्रजीत का असली नाम क्या था। प्रश्न एक बार फिर से, रामायण में इंद्रजीत का असली नाम क्या था। दोस्तों पांचवें प्रश्न के रूप में सुनिए इस गीत के कुछ अंश, जिसमें आपको बताना है इस गीत के फिल्म का नाम।

दोस्तों, अभी आपने सुना है इस गीत के अंश। इसमें आपको बताना है इस गीत के फिल्म का नाम। दोस्तों, अब मैं आप सभी को हमारे कड़ी क्रमांक 71 में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब देने वाले साथियों के नाम बता देती हूँ। भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा। महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। बोटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी और विभूति साहू। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन सेन। नरगोड़ा से महाराज कीर्तनपुरी, गोस्वामी। लक्ष्मीन देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, बंटी, बबली वर्मा। उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता। बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, आशुतोष अंगारे। नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत। अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, तुषारनी, खुमेंद्र मसिया। बालोद से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया, मास्टर अल कबीर। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभे, राधिका, बेबी, अनिष्का, तन्मय गजभे। कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत साहू।

पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी नोमेश नेहा वानिया सिंह रौल, लोरमी चचेडी से शंकर कोलाम, संतोषी संजय संध्या शिवम कोलाम, कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीना विनय शंकर नयन शुमांशु पांडे, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना अश्वनी विपुल कामड़े, लोरमी चचेडी से कमलकांत मरावी, प्रमीला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष कुमार विनीत क्रिस्टी पटवा, नाथघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा, चिरमिरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद कालेंद्री लहरे, आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब हमें देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र भेज सकते हैं। पत्र भेजने का हमारा पता है, क्रम इंद्रधनुष युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड 497001। या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है इंद्रधनुष@gmail.com। दोस्तों, इसी के साथ क्रम इंद्रधनुष बस यहीं तक।

चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम फिल्म संगीत में और सुनते हैं गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कांटे से, जिसमें आवाजें हैं ऋचा शर्मा और सुखविंदर की। गीतकार और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: आचरण उसे समाज में अकेला कर देता है। एक व्यक्ति चाहे कितना भी शिक्षित या संपन्न क्यों ना हो, यदि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो लोग उससे दूरी बनाना पसंद करते हैं। दूसरी ओर साधारण व्यक्ति भी अपने अच्छे आचरण के कारण सबके प्रिय बन जाते हैं। मनुष्य के जीवन में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। बचपन में परिवार से मिले संस्कार ही आगे चलकर उसके आचरण का आधार बनते हैं। माता पिता बच्चों को सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की सहायता करना और विनम्र रहना सिखाते हैं। यही छोटे छोटे संस्कार व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं। जिस समाज में अच्छे संस्कार और अच्छा आचरण होता है, वहाँ शांति, प्रेम और आपसी सम्मान बना रहता है। अच्छा आचरण केवल दूसरों के प्रति विनम्रता दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ईमानदारी, सहनशीलता, अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे गुणों से भी जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है, समय का सम्मान करता है और दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है, वही वास्तव में अच्छे आचरण वाला कहलाता है। मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार से कठिन परिस्थितियों को भी सरल बनाया जा सकता है। आज के समय में विज्ञान और तकनीक ने जीवन को बहुत सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के व्यवहार में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग धैर्य और सहनशीलता खोते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, दूसरों की बात न सुनना और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना आज सामान्य होता जा रहा है। सोशल मीडिया के दौर में लोग शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। ऐसे समय में अच्छे आचरण की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। अच्छा आचरण केवल व्यक्ति को सम्मान ही नहीं दिलाता, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाता है। यदि परिवार में सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का व्यवहार करे तो घर में सुख और शांति बनी रहती है। विद्यालयों में विद्यार्थी यदि अनुशासन और विनम्रता का पालन करें तो शिक्षा का वातावरण बेहतर बनता है। इसी प्रकार समाज में यदि लोग ईमानदारी और सहयोग की भावना रखें तो समाज अधिक सुरक्षित और सुखी बन सकता है। हमारे महापुरुषों ने भी सदैव अच्छे आचरण का संदेश दिया है। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाया। भगवान बुद्ध ने करुणा और सहनशीलता का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इन महान व्यक्तियों का जीवन हमें यह सिखाता है कि अच्छे विचारों के साथ अच्छा आचरण भी आवश्यक है। अच्छा आचरण मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और दूसरों के मन में विश्वास पैदा करता है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, उसकी बातों का प्रभाव भी अधिक होता है। वही बुरा आचरण व्यक्ति की छवि को खराब कर देता है। कठोर वाणी, अहंकार, झूठ और स्वार्थ जैसे व्यवहार धीरे धीरे व्यक्ति को समाज से दूर कर देते हैं। आचरण का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि घर और समाज में अच्छा व्यवहार होगा तो बच्चे भी अच्छे संस्कार अपनाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार से दूसरों के लिए प्रेरणा बने। वास्तव में मनुष्य का आचरण ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार हमेशा लोगों के दिलों में सम्मान दिलाता है। इसलिए जीवन में सफलता और सुख प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान और योग्यता ही नहीं, बल्कि अच्छा आचरण भी आवश्यक है। यही कहा जा सकता है कि अच्छा आचरण जीवन को सुंदर, शांत और सफल बनाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार में विनम्रता, ईमानदारी, सहनशीलता और प्रेम को अपनाए तो परिवार, समाज और देश सभी अधिक सुखी और समृद्ध बन सकते हैं। वास्तव में अच्छे आचरण वाला व्यक्ति ही सच्चे
1: पर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री है आज रायपुर में 112 वाले 400 गाड़ी के संगे संग 32 ठिन फॉरेंसिक मोबाइल वैन ला हरा झंडी दिखा के करें रवाना। बस्तर जिला के गांव नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र के करें उद्घाटन। प्रदेश के जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना मन के फायदा पहुंचाए बर आज ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के शुरुआत। और महासमुंद जिला में आज पुलिस गाड़ी की जांच के दौरान एक ठिन कार ले 7.25 किलो ले ज्यादा के सोना के जेवरात करीन बरामद। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 और 32 ठिन फॉरेंसिक मोबाइल वैन ला हरा झंडी दिखा के रवाना करें। संगे संग

0: 33 ठिन विशेष निगरानी वाहन और 60 ठिन राजमार्ग गस्ती गाड़ी लघलो रवाना करिन। एकर उद्देश्य राज्य के आपातकालीन सहायता प्रणाली के विस्तार करना और नवा आपराधिक कानून के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता ला मजबूत करना है। अभी तक प्रदेश के सिर्फ 16 ठन जिला मन में यह सुविधा मिलत रहीस, फिर अब राज्य सरकार हा डायल 112 सेवा के विस्तार करके जम्मो 33 जिला मन में कर दे है। एक के नंबर सबो पर थीम ऊपर आधारित ये सेवा पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी, आगजनी, सड़क दुर्घटना और आपदा जैसन स्थिति में तुरते मदद दे जाही। अब राज्य के नागरिक पारंपरिक दूरभाष काल के अलावा 112 इंडिया अनुप्रयोग, संकट संकेत सेवा, एआई आधारित संवाद प्रणाली, ईमेल, वेब अनुरोध के संगे संग सामाजिक माध्यम ले घलो आपातकालीन मदद मिल सकी। नवा आपराधिक कानून के तहत वैज्ञानिक जांच ला मजबूती दे बर 32 ठिन आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन चला जाते। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संगे संग विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री घलो शामिल हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर जिला के गांव नेतानार स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंची, जहां ओमन शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र के उद्घाटन करीन। ए मौका में ओमन कहिन की पाछू 6 दशक ले नक्सलवाद के सेती बस्तर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हो है, जिखर भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार है पाछू 5 साल में करी। ओमन कहिन की बस्तर के जम्मो 196 में 70 सुरक्षा कैंप ला अवैया 1.5 साल में जन सुविधा केंद्र में बदल के ओला आदिवासी कल्याण केंद्र बनाया जाही। ही दिशा में आज ए जन सुविधा केंद्र के लोकार्पण करेगीस। उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री है इमली प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेवत स्व सहायता समूह के माइलोगिन मल्ले गोट बात करें। जन सुविधा केंद्र के खुले ले दूर दराज में रहैया लोगन मल्ला शासकीय और डिजिटल सेवा जेमा नवा आधार, आधार अपडेट, KYC, मोबाइल नंबर अपडेट और ई आधार जैसन सुविधा मिल सकी। संगे संग गांव के लोगन मल्ला ऑनलाइन प्रमाण पत्र के फायदा मिली। केंद्र में जन्म, आय, जाति जैसन प्रमाण पत्र बनाए में अब लोगन मल्ला एती होती जाए की जरूरत नहीं पड़ी। केंद्रीय गृहमंत्री है जगदलपुर में स्थित अमर वाटिका में माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में जान देवैया 1000 ले ज्यादा शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि दिन। ए मौका में ओमन कहिन कि बस्तर के धरती ला शांति, सुरक्षा और विकास को ती ले जाए में ये जवान मन के बड़का भूमिका है। इस दौरान गृहमंत्री है बीजापुर नक्सली हमला में शहीद जवान कालेन्द्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मंडावी के परिवार वाले मल्ले मिलिन। केंद्रीय गृहमंत्री है सुरक्षा बल के जवान मल्ले गोट बात करके उखर साहस और समर्पण के प्रशंसा करिन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री घलो शामिल हुईन। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काली जगदलपुर में होवैया मध्य क्षेत्रीय परिषद के बैठका के अगुवाई करही। इमा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के संगे संग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मन घलो शामिल होही। केंद्रीय गृहमंत्री है कहिन कि बस्तर के संगे संग अब भारत नक्सल मुक्त हो चुके हैं। नक्सल मुक्त के अभियान में हजारों जवान मन अपन बलिदान दे है। श्री शाह आज जगदलपुर में राखे गए उजर बस्तर बदलते बस्तर की नई पहचान कार्यक्रम ला संबोधित करें। ओमन कहिन कि जब केंद्र सरकार है नक्सलवाद खत्म करे के संकल्प लिन तो उखर उद्देश्य सिर्फ माओवाद के खात्मा करना नहीं रहीस, भलुक बस्तर क्षेत्र के गरीब आदिवासी मन की जिंदगी में जम्मू सुविधा पहुंचाना रहीस जौन हा बड़का शहर मन में होते। ओमन कहिन कि अवैया 5 साल में बस्तर है देश में सबले विकसित आदिवासी संभाग बनी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो 5 समाचार को दी। प्रदेश के जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना मन के फायदा पहुंचाए बर आज ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के शुरुआत होगी। 25 मई तक चलैया ये अभियान प्रदेश के 8000 ले ज्यादा गांव मन में चलाया जाही। आदिम जाति विकास विभाग के ए अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष

0: अभियान ले जुड़े गांव मन शामिल करे गए है। रायपुर जिला ला छोड़ के प्रदेश के जम्मू जिला मन में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजना मन के लाभ पात्र लोगन मन तक पहुँचाए जाते है। अधिकारी मन गाँव मन में जन सुनवाई करी और आदि सेवा केंद्र मन में शिकायत मन के निपटारा करे जाही। ऑनलाइन दवाई मन के बिक्री के विरोध में कतकोन केमिस्ट संगठन डहार ले 20 मई के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान करे गए है। इला देखत प्रदेश के खाद्य और औषधि प्रशासन ह जम्मू जिला मन में अधिकारी मन ला जरूरी जीवन रक्षक दवाई आपातकालीन स्वास्थ्य उत्पाद और चिकित्सकीय जिनिस मन ला राखे के निर्देश दे है। प्रशासन ह बतैन कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अस्पताल जन औषधि केन्द्र धनवंतरी मेडिकल स्टोर और आने औषधि केन्द्र मन में दवाई मिली। प्रशासन ह आम लोगन मन ले अपील करे हवे कि ओमन कोनो प्रकार के दवाई ला सकेल के झन रखें। महासमुंद जिला में आज पुलिस गाड़ी जांच के दौरान एक ठीन कार ले 7.25 किलो ले ज्यादा के सोना के जेवरात बरामद करी है। बरामद सोना के कीमत 9,17,00,000 रुपया आंके गए है। हमारे संवाददाता ले मिले जानबा के मुताबिक जिला के सिंघोड़ा थाना पुलिस डहार ले ओडिशा सीमा ले लगे रेहटी खोल नाका में जांच अभियान चलाया जात रही। यही दौरान ओडिशा कोती ले आवत एक ठीन कार ला रोक के तलाशी लेगी। तलाशी के दौरान सोना के आभूषण जब्त करेगी। पुलिस दस्तावेज पेश नहीं करे के सेती गुजरात के 3 जिन आरोपी मल्ला हिरासत में ले है। आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय ला जानबा दे देगे है। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के एक दो जगह में हवा गरेर चले और गाज गिरे के संभावना जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल के खाड़ी के ऊपर एक ठिन निम्न दाब के क्षेत्र बने हैं। संगे संग एक ठिन चक्रीय चक्रवात विस्तारित है। एकर असर ले बदली वर्षा के स्थिति बनत है। जगदलपुर के बालिंगा के तीर आज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में बस के पलटे ले एक झीन यात्री के मौत हो गए। उन्हें 30 झीन यात्री मन घायल हो गए है, जिमा ले 7 झीन के हालत गंभीर बताया जाते है। ये बस रायपुर ले कोंटा जावत रहीस और कोरबा जिला के पाली थाना क्षेत्र के गांव भादा के जंगल में तेंदुपत्ता टोरे बर गे दो झीन गांव के लोगन मन ऊपर भालू हमला कर दिन। ये घटना में घायल दोनों मनखे ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। केंद्रीय गृहमंत्री आज रायपुर में 112 वाले 400 गाड़ी के संगे संग 32 ठिन फॉरेंसिक मोबाइल वैन ला हरा झंडी दिखा के करें रवाना। बस्तर जिला के गांव नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र के करें उद्घाटन। प्रदेश के जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर आज ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के शुरुआत। और महासमुंद जिला में आज पुलिस गाड़ी जांच के दौरान एक ठिन कार ले 7.25 किलो ले ज्यादा के सोना के जेवरात करीन बरामद। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ममता सिंह और साथियों की आवाजों में इस देवी गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए पंचम दास और साथियों की आवाजों में ये भुईहारी गीत।

इस भुयारी गीत के साथ कार्यक्रम गोधूली आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चिन्मयी श्रीपदा एआर रहमान की आवाज़ों में फिल्म गुरु के इस गीत के साथ। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं एआर रहमान।

कार्यक्रम माधुरी में आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में फिल्म रेस 3 का ये गीत। गीतकार हैं सलमान खान और संगीतकार हैं विशाल मिश्रा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र, जिसमें आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म एक विलन का ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं मिथुन।

अरिजीत सिंह की गाई इसी गीत के साथ कार्यक्रम माधुरी आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी

0: पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के नेतानार में जन सुविधा केंद्र का किया शुभारंभ, कहा कि अगले 1.5 साल में बस्तर में स्थित 70 सुरक्षा शिविरों को ऐसे सेवा केंद्रों में बदला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत 400 अत्याधुनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अब प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हो गई है ये सेवा। महासमुंद पुलिस ने तलाशी के दौरान एक वाहन से करीब 9 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बस्तर जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। इस जन सुविधा केंद्र को आदिवासी जन नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर गुंडाधुर के नाम पर स्थापित किया गया है। ये जन सुविधा केंद्र CRPF के सुरक्षा परिसर में बनाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आगामी 1.5 साल में बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के 196 कैंपों में से 70 कैंपों को इसी तरह के सेवा केंद्र में बदला जाएगा।
8: पूरे बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों को एक वादा कर जाता हूं, 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे, किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए एक कैंप की शुरुआत की है। बस्तर में अभी 196 कैंप है, उसमें से 70 कैंप को हम इसी प्रकार के सेवा गांव के अंदर 1.5 साल के अंदर परिवर्तित कर आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाने वाले हैं। हमने कैंपों को अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए NID को प्रोजेक्ट देने वाले हैं, जिसके अंदर बैंकिंग की भी सुविधा होगी, आपका आधार कार्ड भी बनेगा, राशन कार्ड भी बनेगा, सरकार की योजना के पैसे यहीं से आपको मिल जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 371 योजना का लाभ एक ही भवन में से आपको मिलेगा। ढेर सारी गतिविधियां यहां जोड़ी जाएगी, हमारे हर गांव में डेयरी भी आएगी और हर आदिवासी बहन को 2 पशु देने का काम भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर।

0: करेंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री ने इमली प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रही स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की और उनसे जाना कि कैसे वे इमली की बिक्री कर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। श्री शाह आज जगदलपुर में आयोजित उजर बस्तर बदलते बस्तर की नई पहचान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों के साथ ही नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया था तो उसका उद्देश्य केवल माओवाद का खात्मा करना ही नहीं बल्कि बस्तर क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के जीवन में वे सभी सुविधाएं पहुंचाना भी था जो बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध हैं।
0: अब हत्यारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान आज जगदलपुर में अमर वाटिका पहुंचकर माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर की धरती पर शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करने में जवानों का बलिदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले वीर जवानों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान श्री शाह ने बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवान कालेंद्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मंडावी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारजनों के बीच बैठकर उनका दुख साझा किया और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के जवानों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके साहस तथा समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 19 मई को जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 और 32 फोरेंसिक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 33 विशेष निगरानी वाहन और 60 राजमार्ग गश्ती वाहन भी रवाना किए। अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में डायल 112 आपातकालीन सेवा उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सकेगा। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इस आधुनिक व्यवस्था के तहत अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी विकसित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य और निर्बाध रूप से हो रही है। राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने बताया कि राज्य की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान में हो रही आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त है। नागरिकों को आश्वस्त किया गया है कि ईंधन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेल कंपनियों ने नागरिकों से घबराहट में पेट्रोलियम उत्पादों की खरीदी न करने की अपील की है। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो गया है। 25 मई तक चलने वाला ये अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी गांव

0: में जनसुनवाई करेंगे और आदि सेवा केन्द्रों में शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। ऑनलाइन औषधियों की बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों द्वारा 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसे देखते हुए प्रदेश के खाद्य और औषधि प्रशासन ने सभी जिलों में अधिकारियों को जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां, आपातकालीन स्वास्थ्य उत्पादों और चिकित्सकीय सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केन्द्रों, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स और अन्य औषधि केन्द्रों से दवाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि घबराहट में अनावश्यक दवाओं का संग्रहण न करें। महासमुंद जिले में आज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 7.25 किलो से अधिक सोने के जेवरात बरामद किए हैं। बरामद सोने की कीमत 9,17,00,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले की सिंघोड़ा थाना पुलिस द्वारा ओडिशा सीमा से लगे रेहटीखोल नाके पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान ओडिशा की तरफ से आ रही एक संदिग्ध कार को रोककर ली गई तलाशी में छिपाकर ले जाए जा रहे सोने के आभूषण जब्त किए गए। पुलिस ने वैध दस्तावेज पेश न करने पर गुजरात के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय को सूचना दे दी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही एक चक्रीय चक्रवात विस्तारित है। इसके असर से बदली बारिश की स्थिति बन रही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के लिए प्रभात फेरी और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जगदलपुर के बालिंगा के पास आज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर बस के पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है। वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई गई है। ये बस रायपुर से कोंटा जा रही थी। बिलासपुर के कोटा परियोजना मंडल परिक्षेत्र के तहत रतनपुर के जूना शहर क्षेत्र में वन विभाग ने जंगली सुअर के मांस की अवैध बिक्री के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भादा के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए 2 ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। इस घटना में घायल 2 ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के नेतानार में जन सुविधा केंद्र का किया शुभारंभ। कहा कि अगले 1.5 साल में बस्तर में स्थित 70 सुरक्षा शिविरों को ऐसे सेवा केंद्रों में बदला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत 400 अत्याधुनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अब प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हो गई है ये सेवा। महासमुंद पुलिस ने तलाशी के दौरान एक वाहन से करीब 9 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, आइए आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। अब से थोड़ी देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 पर लगेगी ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल, जिसमें आप सुनेंगे सामयिक चर्चा में वैज्ञानिक शोध और नवाचार से रोग मुक्त भविष्य की ओर बढ़ते कदम, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और हरित भारत अभियान पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश। रात्रि 9:15 पर हम आपके लिए लाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम

चित्रपट संगीत। साथ ही 9:30 पर आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सूर्यामिनी। रात्रि 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए आपको अवगत करा दें हमारे कल के कार्यक्रमों से।

कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम विचार बिंदु का प्रसारण होगा प्रातः 6:30 पर। कार्यक्रम रामचरित मानस का गायन आप सुन सकेंगे प्रातः 6:35 पर। सामूहिक सुझाव पर आधारित कार्यक्रम खेती की बात का प्रसारण होगा प्रातः 6:45 पर। प्रातः 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे जंगल। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:30 पर। कार्यक्रम मोर भुइयां छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम ये आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन लेकर हम हाजिर होंगे प्रातः 9:00। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आप सुनेंगे प्रातः 10:00।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे कल प्रातः 11:05 पर NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा दोपहर के ठीक 12:00। एक ही शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन का प्रसारण होगा दिन के 12:30 पर। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे दिन के 1:10 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन के 1:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ आरंभ होगी हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5:00। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली लेकर हम आएंगे शाम के 6:20 पर और ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:00।

शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे दिन के 1:10 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन के 1:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ आरंभ होगी हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5:00। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली लेकर हम आएंगे शाम के 6:20 पर और ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। साथ ही आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी जिसमें आप सुनेंगे हेलो किसानवाणी। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे रात्रि 10:00। साथ ही रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

इसी के साथ कार्यक्रम विवरण आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। नीचे प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए डॉक्टर बशीर बद्र की लिखी ये गजल चंदनदास की आवाज में।

चंदन जास की गाई इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनैया जम्मू किसान भैया बहनी मन कर स्वागत है। मैं भजन भैया रउरे जम्मू किसान भैया बहनी मन ला राम राम कहत हूँ, जय जोहार। संगवारी हो देखी भाई, अभी कर समय देखत हन कि दिनों दिन गर्मी हर बढ़त जात है। ऐसन में जरूरत है कि भाई हमर जो मवेशी मना है, खास करके जो हमन पालतू जानवर मना है, उकर तिहा जतन करना बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही कहूँ कि भाई जो भी हमर किसान भैया बहनी मन जो पालतू जानवर पाले ही, ओला जो है पानी देत रही, काबर कि ऐसा समय में उमन भी प्यासे होत रहते, तो उमन कर प्यास बुझे एकर बरी कम से कम उमन कर पानी कर व्यवस्था जरूर करी। बाकी देखी आज दिन विशेष कर गोइट करी तो आज है विश्व वैक्सीन एड्स दिवस। मतलब विश्व वैक्सीन एड्स दिवस कहे मतलब 18 मई के खबर मनाल जाते। एक पीछे उद्देश्य यही है कि कौन तरह से देखा भाई, दिनों दिन वैज्ञानिक मन नवाचार करते हैं, नवा नवा शोध करते हैं, और वैक्सीन विकसित करे पर जो है वैज्ञानिक अनुसंधान ला बढ़ावा दे पर ये दिन ला मनाल जाते। रौरे सबो जाना थे एड्स का नाव गली गली में गूंजल। अब ये बहुत खतरनाक बीमारी है, एक इलाज घलूक बड़ा मुश्किल से हो पारे। तो अगर ये के कोनो ला होए किस्मानी तो शरीर कर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ला कमजोर कर देल। रौरे मल्ला सुरता करी जब कोविड चलत रही, जिस समय कोरोना चलत रही, कतना हमार अपन आदमी मन जो है हमार से अलग हो गई। तो ऐसा में हमला सचेत होना बहुत जरूरी है कि कोई भी रोग राई होता है तो उकर तत्काल देखिए उपचार करना। और आज कर समय में देखिए आधुनिक चिकित्सा कर जब गोइट करत है ना, तो बरन बरन कर हमार वैज्ञानिक मन जो है शोध करते हैं, नवाचार करते हैं, और ये कही कि रोग मुक्त भविष्य पर एक तरह से आगे बढ़ता हुआ कदम जिला कही करते हैं। तो जो भी हमारे स्वयं सेवक हैं, जो भी हमारे डॉक्टर मन हैं, उमन ला हमन ला सलाम करना चाहिए, काबर की उमन रात दिन देखी मेहनत करता है, रात दिन शोध कार्य करता है, और हमार बीमारी से बचे पर कहना चाहिए उमन पर बरन बरन का टीका मन लाना है। तो ये जो विश्व वैक्सीन एड्स दिवस हमन ला यही संदेश दिल कि हमन वैज्ञानिक शोध ये कही के सुरक्षित व्यवहार, और अगर कहीं का स्टेट को लागत है कि नहीं भी तबीयत हर गड़बड़ाता है तो समय पर जाँच और जागरूकता के माध्यम से ये जो गंभीर बीमारी है जिला हमन एड्स कथन ओकर से हमन नियंत्रण पा सकत हन। खास करके हमर जो युवा किसान भैया बहनी मन है उमन ला मैं जरूर ये बताना चाहूँ।

0: कि अपन जीवन शैली ला, अपन रहन सहन ला, खान पियन ला बढ़िया रखें। अगर कोनो तरह से कहीं कोई परेशानी होते, संक्रमित रक्त से बचें, काबर की संक्रमित जो खून होते, खून देह में भी ये बीमारी हर फैलते, तो स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी रखें और जानकारी कर साथ जो है इला समाज में हमन जागरूकता लाएं, लाजे डरे झैन होए। मैं तो यही कहूँ कि भाई हमर जो मानव समाज है, जो मानव समुदाय है, स्वास्थ्य कर सुरक्षा पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर महत्व भी समझना है और जागरूक समाज कर निर्माण में हमन सब, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे लड़का, सब झनला हमन एक कहना चाहिए जिम्मेदारी लेना पड़ी। और ये जो कोई भी रोग राई होता है उकर पीछे जागरूकता और जागरूकता के साथ साथ नियमित खान पान, संतुलित जीवन जीना हमन ला बहुत जरूरी है। देखिए आज कर समय में देखत हैं ना, मैं कहते रहें कि भाई हमारे वैज्ञानिक मन बरन बरन कर शोध कर रहता है, मानव जीवन ला बेहतर से बेहतर बनाता है। दो ही बात है, देखिए हर सिक्का कर दो पहलू होते, एक तो कही नहीं तो हमन एक तरफ विकास कर रास्ता में जाते हैं, विकास बर बरन बरन कर देखिए हमन भौतिक जीवन कर सुख सुविधा ला पाए बर एक से एक वैज्ञानिक मन शोध करते हैं, वहीं दूसर कति देखिए हमारे विनाश कर रास्ता ला भी गढ़त हैं। तो दोनों कर बीच कर संतुलन करे बर हमन ला देखिए प्रकृति कर संतुलन करना बहुत जरूरी है। और प्रकृति जब सुंदर रही, प्रकृति संतुलित रही, तो निश्चित रूप में समय ऊपर बरखा हो ही, समय ऊपर पानी गिर ही, और पानी गिर ही तो हमार खेती पाती भी बढ़िया होई। तो हमन ला ध्यान रखना है कि जो भी वैज्ञानिक मन हमन नवाचार करते हैं, उमन का उद्देश्य ही है कि हमार जो भारत हर रोग मुक्त हो। भविष्य के निर्माण में जन जागरूकता बहुत जरूरी है, स्वच्छता कर जब गोइट करथन हमन, जब पर्यावरण कर गोइट करथन, संतुलित खान पान कर गोइट करथन, और संगे संगे ये कहूँ कि हमार आज कर जरूरत है योग करना, नियमित जो है हमन ला व्यायाम करना पड़ी। और टीकाकरण जो होता है वह ला ध्यान रखना है और टीकाकरण कराना है, चाहे वो हमार जो पशु पालक किसान भैया बहनी मन है उन कर देखी बहुत सारा टीका मन लगेल, तो वो टीका ला भी हमन ला ध्यान देना है, लगवाना है। और यही वैज्ञानिक शोध, सरकारी योजना और जन सहभागिता जिला हमन कथन मिलके जब हमन कार्य काम बूता ला करब, तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होगी। किसान भैया बहनी हो, वैज्ञानिक शोध और नवाचार हमार मानवता पर एक तरह से कहीं नहीं तो आशा का संचार करता है और हमन ला स्वस्थ सुरक्षित और रोग मुक्त कही भविष्य कर आगे कति बढ़े कर हमन ला एक रास्ता ला गढ़ता है। तो यही कहूँ कि भाई हमन मिलजुल के समाज ला, हमार गांव ला सुंदर बनाई और अच्छा बनाई। अच्छा तब बनी जब देखिए छोटा छोटा बात से हमार जो है ध्यान रखना पड़े, खास करके देखिए हमन स्वच्छता कर बारे में बात करथन, खास करके हमन देखत हन कि आए दिन इतना गंदगी हो जाए गाँव मन में, तो एक वजह से बरन बरन कर बर बीमारी होते। तो हमन ला गाँव ला भी स्वस्थ रखना है, हैंडपम्प कर आसपास में कोई भी कचरा है देखत हन कि ढेरे आज कल साफ सफाई नहीं करें, तो जो हैंडपम्प कर आसपास ढेरे कचरा चाहे ढोड़ी आसपास जो भी पानी कर जो हमारे व्यवस्था जिला हम पीथन वो आसपास हर साफ रहे। तो जब स्वच्छ भारत कर जब बात करथन हमन, तो निश्चित रूप से हमन ला ध्यान रखना है कि हमार खान पान, हमारे जो पानी है वह जिंदगी कर आधार हवे, तो पानी भी स्वस्थ रहे, साफ रहे। ये पानी कर जब बात करथन तो पानी स्वस्थ पी, और स्वस्थ जब रह तो देखिए हमार सब काम बूतन बढ़िया हो, खेती किसानी घलू अच्छा हो, ये बात कर ध्यान जरूर रखी। बाकी मैं कहते रहें देखिए भाई गोइट बात कर संगे संगे अगर गीत गोविंद रौरे मल्ला नहीं सुना हूँ तो हूँ मल्ला अच्छा नहीं लागे। तो मैं एक टाइज बड़ा सुघर इधर भोजपुरी लोक गीत लाने हुआ है और मुझे लगता है कि रौरे मल्ला ये अच्छा लागे और नवा गाना है अविला गई ना है मोहम्मद खलील और उनकर संहिता, तो लगी ये गीत ला सुन थे।
1: अरे कहिया ले मिलो बा बलम मोरे।

बड़ा सुघर देखी ये दे लोकगीत और खास करके भोजपुरी लोकगीत रहीस। और ये गीत में एक तरह से देखी भाई श्रृंगार तो रहीस ही, संगे संगे में सुनत रहें तो बड़ा ये देखें कि भाई हमर दुनिया जिस तरह से माया कर दुनिया है, आत्मा और परमात्मा कर जो बात करथन वो ये कही कि निर्गुण रूप में गीत हर सुने पर भेटाइस। रौरे मनला अच्छा लागिस हुई। बाकी गोट करी देखी भाई आज सोमवार कर दिन है और आज कल में हमन देखत हन कि गर्मी कर जब मौसम है और तेज़ धूप होता है ऐसन में जो भी हमन फलदार पौधा लगाए हन खास करके केला और पपीता कर गोट करूँ मैं, काबर कि अभी कर समय में केला पपीता फसल में तेज धूप से हमन कैसे बचाव करी और कैसे ओकर सिंचाई प्रबंधन करी। तो सबसे पहल बात है कि भाई देखी गर्मी कर मौसम चलता है, तेज धूप घलुक होता है और आए वाला समय में देखी कभी कभी लू भी चली और अभी नौतपा भी आई, तो वरन ये कही कि तापमान हमार दिनों दिन बढ़ी। तो ऐसन में खास करके जब तापमान अधिक बढ़ जाते संगवारी हो तो केला हुई पपीता हुई जैसे ये फलदार फसल में तेज़ी से एकर असर देखे पर मिले, खास करके एकर बड़भार कही तो वह रुक जाते जो पतई मन है उहर झुलस जाते और खास करके एकर से जो हानि हुल जो हमर फल लगे वाला रहेल उकर गुणवत्ता जो है प्रभावित होते और फल कर गुणवत्ता प्रभावित होते तो निश्चित रूप से हमन उकर उत्पादन भी कम होते और एकर से हमरला एक ही किसान भैया बहनी हो नुकसान ही नुकसान होते। तो हमला ध्यान रखना है कि एकर बर समय पर ये कही कि उचित सिंचाई और फसल प्रबंधन अपनाना बहुत जरूरी है। और मैं तो यही कहूँ कि तेज धूप से भाई कैसे बचाव करी, तो एकर बर सबसे पहली बात देखी किसान भैया बहनी हो खेत में नमी ला बनाए के रखी ताकि पौधा कर जो आसपास है कोई सूखा घास होइस पतई होइस या कोई फसल अवशेष है ओला बिछा के मल्चिंग कर लेना चाहिए। खास करके जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो वो समय हल्का सिंचाई बीच बीच में हर आतर में एक दो दिन कर आतर में करते रहना चाहिए ताकि हमार जो फलदार पौधा है चाहे वो केला हो चाहे पपीता हो और पौधा लगा ठंडक मिलत रही। संगे संगे जो छोटे छोटे पौधा है नानुक नानुक पौधा है ओला और ज़्यादा ध्यान दे कर जरूरत है, काबर की तेज धूप से ओला बचाना है तो हमला सेड नेट या घास फूस कर जो आड़ कही ओला लगा सकत हन। केला कर पौधा में खास करके जो सूखा हो इस रोगग्रस्त अगर कोई पतई मन है अगर रौरे देखत हन कि भाई पतई मन में रोग लग जाता है या पतई हर सुखाए जाता है तो जितना जल्दी हो सके किसान भैया बहनी हो वो पतई मन ला हटाए दे और उचित पौधा जो दिखता है साफ पौधा जेकर पतई हर बढ़िया हरियर है ओला रहे दे और चेटको कहीं के दाघा दाग लग गईसा है या कोई कोनो तरह से रोग राय दिखे कर लक्षण दिखता है तो ओला तुरंत तोड़ के हटाए दे। तभी हमन पौधा कर देखिए उचित देखभाल करना बहुत जरूरी है। पपीता फसल में देखी तना कर आसपास जो मिट्टी चढ़ाए से पौधा जो है हमर मजबूत रहते और जो अगर गर्म हवा चलता है तो एकर से भी प्रभावित कम होते। संगे संगे तेज लू वाला क्षेत्र में खेत कर मेड़ में छायादार जो पौधा है ओला लगाए से गर्म हवा कर प्रभाव कम होते। अगर बात करी देखिए किसान भैया बहनी हो सिंचाई प्रबंधन कर तो गर्मी में केला फसल ला हमेशा सर लगा कही ध्यान देना जरूरी है, ओला पर्याप्त पानी देना जरूरी है और काबर की भाई अगर पानी सही रूप से मिलत रही तो ओकर जड़ हर मजबूत रही। और पपीता फसल में खास करके जल भराव से बचना चाहिए, हल्का सिंचाई करना चाहिए, पानी कर मात्रा ज़्यादा ओमें झिन हो ये बात कर भी ध्यान रखिए। अगर रौरे जग ड्रिप सिंचाई पद्धति या है तो आओ सुघर है, काबर की भाई ड्रिप सिंचाई पद्धति में जहाँ जितना पानी कर जरूरत है उतने पानी हमन लावला देना पड़ी तो एकर से का हुई कि पानी कर भी बचत हुई और जो पौधा है जो खास करके उनमें नमी जो है बने रही। और एक बात कर ध्यान रखना है सुबह होए या शाम के समय सिंचाई करना बहुत फायदेमंद होते ये बात ला ध्यान रखी, खास करके दोपहर में पानी जो है जल्दी सोख लेते तो कोशिश करी कि दोपहर में हमन जो है सिंचाई झिन करी। एक तो बिहाने बिहाने उठी तो बिहान टाइम भी कर सकत थे या सांझ जुआर कर सकत थे। खेत में जल निकासी कर देखी व्यवस्था ला रखी ताकि अगर बगरा पानी हो जाता है तो वो हर जो है बही के निकल जाए, एकर से क्या है कि हमार जो पौधा है पौधा कर जो जड़ है उनमें नुकसान नहीं हो। किसान भैया बहनी हो केला पपीता फसल कर देखभाल कर अगर गोट करी तो जो पौधा है ओला सूक्ष्म पोषक तत्व कर छिड़काव करे से गर्मी में तनाव जो है कम होते ये बात कर ध्यान रखिए। खास करके जैविक खाद और गोबर खाद कर उपयोग माटी कर जो क्षमता है जल धारण कर तो ओला बढ़ाते तो

ये बात का ध्यान रखिए कि जैविक खाद और गोबर खाद का उपयोग करी तो ज़्यादा अच्छा रहे। खास करके देखथन कि कहीं अगर केला और पपीता में रोग लागत है, अगर कोई कीट लागत है, तो एकर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो समय पे एकर नियमित निगरानी रखत रही, काबर की गर्मी कर मौसम चलत है, ऐसन में कोई भी अगर कीट लगत है, कोई रोग लगत है, तो उकर संक्रमण बहुत जल्दी हालू हालू फैल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई उचित सिंचाई व्यवस्था हमारे जगह रहना चाहिए, मल्चिंग करे कर व्यवस्था रहना चाहिए, संगे संगे पौध संरक्षण तकनीक। अभी मैं कहत रहें कि हमारे भाई नवाचार किसान भैया बहनी हो, वैज्ञानिक मन बरन बरन कर शोध करते हैं, चाहे वो खेती किसानी कर बात हो, चाहे बर बीमारी कर बात हो, हमन देखत हन कि खेती किसानी में भी एक से एक के दे वैज्ञानिक विधि ला अपनाए के हमन अच्छा फसल उत्पादन ले सकत है। चाहे कोई रोग लागता है ओकर हमन तकनीक सीख ली, कोई कीट लगता है ओकर नियंत्रण कैसे करी, का दवाई कर प्रयोग करना है, ये बात कर जानकारी अगर हमन रखत है तो ये मान के चली चाहे वो फलदार पौधा लगात हन, चाहे वो हमन कही कि जो रवि फसल में लगात हन, चाहे वो ग्रीष्मकालीन फसल में लगात हन, कोई भी अगर वैज्ञानिक विधि अगर अपनावत है, और खास करके बीज अच्छा होना चाहिए, हमर बार पोर्ट बीज रहे, प्रमाणित बीज रहे, संगे संगे ये कही कि सिंचाई कर व्यवस्था हमर जग बढ़िया रहे, उकर अलावा एक मल्चिंग कर व्यवस्था और पौध संरक्षण कर तकनीक ला अपनाए करके हमर किसान भैया बहनी हो तेज गर्मी कर प्रभाव से ला हमन कम कर सकते है। और केला और पपीता फसल ला तो और अच्छा बेहतर से बेहतर जला कत हैं, अच्छा उत्पादन हमन कर सकते है। और अच्छा उत्पादन करब तो निश्चित रूप से एक गुणवत्ता अच्छा हो, और गुणवत्ता अच्छा हो तो फसल अच्छा हो, और फल अच्छा हो तो देखिए बाजार भाव भी अच्छा मिली। और आजकल देखिए अभी इतना मांग चलता है, देखिए आए वाला समय में दिनों दिन फल फूल खाए वाला मन कमी नहीं है। आजकल बाजार हाट गांव आजकल तो मैं देखूँ कि रोड चलत मन में घलुक भाई जे मन जगह है व्यवस्था तो रोड में घलुक चलता है, और साइड में लगा देते हैं तो फल हर हंसते खेलते बिक जाता है। तो रौरे मन ये दिशा में जरूर पहल करी, पपीता लगाई, केला लगाई, आमा लगाई, जब फलदार पौधा लगा तो एकर से आमदनी रौरे मन कर बहुत अच्छा हुई, और जब आमदनी आई तो निश्चित रूप से हमर जीवन में बदलाव आई, हमर घर कर लड़का अपन अच्छा पढ़ी लिखी और आर्थिक विकास हो ही। तो यही कहूँ कि हमन ध्यान दे आजकल कर समय में जो फसल लगाते हैं उनमें फलदार पौधा ला जरूर शामिल करिए। बाकी मैं कहते रहें कि भाई देखिए आज दिन विशेष कर गोट आज कर किसान जग भेंट करवाना रहे, वही क्रम में मैं आज प्रगतिशील किसान हैं श्री संजय कुमार उनकर जो गाँव में जा रहे हैं बड़ा सुघर यदि गोड बात करके आए हूँ, और रहे वाला ये हैं गहिला कोट कर, और अभी ग्रीष्मकालीन फसल में कौन तरफ से खेती करी ताकि लाभ हमन ला मिले, ये विषय में गोड बात हो सा है तो लगी ला सुनत है।

0: किसान भैया बहनी हो, आज मैं आया हूँ ग्राम गहिलाकोट। गहिलाकोट का प्रगतिशील किसान है और अभी ये गर्मी का खेती करी ना है, ये कहे कि ग्रीष्मकालीन खेती करी ना है और बड़ा सुखर दे मेहनत करता है और फायदा ला कमावता है। राउर कर का नाम हवे?
1: मोर नाम संजय कुमार है, ग्राम गहिला।
0: तो सबसे पहले बात करी देखी खीरा वर्गी फसल कर, ग्रीष्मकालीन में बहुत हमर किसान भैया बहनी मन लगाई नहीं है। मैं रास्ता में आवत रहें तो देखा तो कि हर बारी में दे देखी भाई खीरा लगाई नहीं है। तो जो राउर लगाए ही खीरा लौकी ओकर तैयारी कैसे करना पड़े, कैसे जो है वो बीज कर व्यवस्था रौरे करें, एक बारे में बता।
1: बीज व्यवस्था कर बात हो चाहे पौधा के बात हो, तो आजकल जो है ज्यादातर किसान भाई मन जो है हाईब्रिड बीज और पौधा लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो लिए जो है नजदीक फर्जी कृषि फार्म है तो उनकर माध्यम से भी जितना भी पौधा है जैसे लौकी कर होगी, शिमला मिर्च कर होगी, बैगन कर होगी, तो ज्यादातर जो है ग्राफ्टिंग वाला पौधा मिल जाते हैं हाइब्रिड के, तो खरीद के वहां से मतलब नर्सरी से मतलब अपन खेत में लगा सकते।
0: तो एक खेत कर तैयारी कैसे करना पड़े, लोग कब करना पड़े?
1: अब खेत कर तैयारी कर बात आते तो जैसे भाई खेती पाती कर दिन में तो भाई अब 12 बच्चर आजकल खेती होते, जनवरी फरवरी में मतलब स्टार्ट हो जाते तैयारी स्टार्ट हो जाते। भाई ठंड में भी तो बहुत सारा बीज हर अंकुरण नहीं हो पाए, और हाईब्रिड भी जिसे पौधा भी लगाई हो तो तनिक नहीं उमले हो। हर खेत की तैयारी के लिए तो सबसे पहले ये है कि जैसे भाई अगर जिन खेत हर सूख गई से एक बहुमन तरीक पानी ल पटाए दे, है ना, और पानी

0: पटा एक बात कम से कम ओला कम से कम सप्ताह भर तक मतलब दो बार जोता, एक बार पहले तो मान के चला जब तक वह हाल में रही, हाल के बाद जिसे हाल छोड़ ही तेकर बाद जो है एक जोता और बाकी जिस दो ब्रोनी कर सकत है वाला।
1: अच्छा,
0: और एक बाद जो है कर मेड़ कर तैयारी करना पड़ी, और बाकी तो जैसे खाद वगैरह कर तैयारी है तो खाद में जैसे केचुआ खाद होगी, गोबर खाद होगी, भाई जिन किसान मन जगह अवेलेबल है भाई वो उकर उपयोग कर सकत है।
1: देखिए बहुत अच्छा रवे केहन केचुआ खाद कर गोट, तो मैं देखत हूँ कि आजकल चारों कति देखिए हमार प्रधानमंत्री घलू कही है कि भाई अब हमन ला प्राकृतिक खेती कति लौटना है और रासायनिक खाद कर कम उपयोग करना है, तो रवरे ये दिशा में का सोच थी और आए वाला समय में हमार किसान भैया बहनी मन कौन तरह से जो है रासायनिक खेती से हट के प्राकृतिक खेती करें ताकि ओकर से लाभ मिल सके।
0: ये बात ना तो जैसे किसान भाई मन ला भी जानकारी होना चाहिए, और समय समय पर भी जैसे खेती बाड़ी के बात हुई और जैसे ब्लॉक लेवल में होगी चाहे वो भाई अब जिला लेवल में होगी, तो भाई कई प्रकार के जो है कार्यक्रम चलते। हमार सोच विचार ऐसे है कि मतलब भाई अब किसान भाई मन जैसे वजह से यदि पौधा खरीदत है तो भाई 10 रुपया 12 रुपया पड़ते, तो मोर कहना है कि भाई जिन किसान मन जग सुविधा है वो स्वयं से भी मतलब ओकर ग्राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं।
1: खीरा वर्गी फसल में जैसे अभी कर समय में ग्रीष्मकालीन जब हम बात करते तो कितना पानी देना पड़ेल?
0: पानी से ही खीरा हो ले, अब पानी ही खीरा मान ला है ना, तो कर लिए भाई पानी कम से कम 3-4 दिन का अंतराल में मतलब जरूरी है वाला
1: देते रहे।
0: हाँ, ताकि जो है खीरा में मतलब पानी कर कमी मत हो, अगर पानी कर कमी हो तो फल का वृद्धि और साथ साथ में फल फूल कर क्षमता भी कम हो जाए।
1: तो जो राउर लगाए हैं खीराओं में अभी फसल हर कैसन हुई है?
0: अभी जो फसल लगी से वो बढ़िया है और भाई कोई प्रकार का रोग नहीं है रहे तो, लेकिन बहुत सारा जैसे उन्नत किस्म कर बीज हुए जैसे हाइब्रिड वाला ही है तो मैं थ्रिप्स का ज्यादा ज्यादा जो है कीट होते जो पत्तीला मतलब वो मोड़ देते। हाँ, तो ये सब मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ी हल्का ओकर लिए, जिसे अगर जैविक कीटनाशक होगी तो ओकर भाई ज्यादातर जो है उपयोग कर सकते हैं।
1: जब माहौल लग गया तो और कैसे ओकर उपचार करते?
0: जो कृषि वैज्ञानिक बनकर सलाह है भाई अलग अलग प्रकार के रासायनिक जैसे बाविस्टीन कर होगी, थियाराम जेंथिन कर होगी, अलग अलग प्रकार के बताते हैं, लेकिन जैसे भाई अब उन्नत कृषि के क्षेत्र में जाइए प्राकृतिक खेती कर अंतर्गत जाइए तो ओकर लिए जरूरी है भाई कि आप मन जो है प्राकृतिक तरीके से मतलब ओकर कोशिश कराओ कर नियंत्रण कर, तो ओकर लिए जैसे नीम ऑयल भी जो दुकान में मिलते ओकर उपयोग कर सकता है, एकर साथ साथ में जैसे बायो कीटनाशक भी बना सकता है, मतलब जैविक जो कीटनाशक बनते वो भी बना सकता है, ओकर लिए भाई वही 4-5 प्रकार के मतलब वही जैसे पत्ता होगी मतलब साल के बाद वही ला मतलब पौधा में स्प्रे कर दे, ऊपर से मतलब विभिन्न प्रकार का जो कीटनाशक रहते जो कीट रहते उम्र से मतलब बचा जा सकता है।
1: अच्छा, तो देखिए भाई ऐसे परिस्थिति में अगर हम देखते हैं तो अभी समय में जरूरत है भाई प्राकृतिक खेती करे कर, और जो दवाई रवरे बताते हैं उलग उपयोग करते हैं तो किसान भैया बहनी मन अच्छा लाभ ले सकते हैं और का लगाए?
0: तो अभी तो फिलहाल इतना ही चलत है, अभी बाकी वही सोचा था ना अभी बरसात अब गिरे वाला है तो कर से पहले वही बरबटी वगैरह की तैयारी कर वैसे करके।
1: अभी कर जो वर्तमान खेती राउर करत है और आए वाला जो समय है और वो खेती में राउर का बदलाव देखा था?
0: अब भाई अभी कर जो खेती है पहले कर खेती रही सब आए वाला समय कर खेती है इनमें भाई बहुत अंतर हो गई से, और पहले जो किसान भाई मन रही प्राकृतिक खेती करते हैं भाई कोई भी प्रकार का कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं, एक साथ साथ में किसी भी प्रकार का मतलब रासायनिक खाद का भी प्रयोग नहीं करत रहीन भाई, जैविक खाद का उपयोग करत रहीन तो उनमें जो फसल को उत्पादन होत रही कम तो होत रही, साथ ही साथ मतलब मिठास भी रहत रही और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होत रही। अभी कर वर्तमान कर स्थिति में है तो भाई हाइब्रिड खेती बहुत प्रचलन में है और एकर से पेट तो भरत है लेकिन जो है जो मिलना चाहिए जैसे विटामिन होगी भाई स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा जो पोषक तत्व तो है वो नहीं है अभी।
1: साग भाजी भी देखी कई तरह से बरन बरन कर मिलावटी ने, तो हमला जरूरत है किसान भैया बहनी मन भाई खेती किसानी करें सब्जी वर्गीय खेती लगाएं तो प्राकृतिक खेती करती ज्यादा अच्छा ध्यान दें। राउर जैसे खेती करते हैं तो का खाद मन ला देते हैं?
0: तभी जैसे फसल के लिए पहला डोज तो वही हो जैसे वर्मी कंपोस्ट ला डाल ही, केचुआ खाद ला डाल ही, ये गोबर खाद ला डाल ही, जिसे हमारे किसान भाई मन ज्यादातर ये सोचते हैं कि भाई हमारे सूखा वाला जिसे वर्मी कंपोस्ट ला डाल या गोबर खाद ला डाल तो ज्यादा उपजाऊपन हो, लेकिन कृषि वैज्ञानिक मन कर मानना है कि भाई यदि कच्चा गोबर मिलत है, कच्चा गोबर ला मान के चला 10-15 दिन गुड़ के साथ में सड़ाए देता है वाला।

0: और ओकर साथ साथ में जैसे बेसन मिलाए देता हूँ मैं, तो वह जो है जैविक उर्वरक कर काम करे बोला। जैसे अभी ड्रिप सिस्टम होगी से आजकल तो भाई नवाचारिक तरीका है, तो ड्रिप सिस्टम में जो है बेसल डोज के रूप में बोला सप्ताह सप्ताह भर में दे।
1: बहुत अच्छा रहो रे जानकारी ला देहन, और काबर की भाई गोट किसान अगर जानकार रहे तो फसल अच्छा होते, उत्पादन अच्छा होते, और ये कहे कि भाई खुद कर भी विकास होते और गाँव कर भी विकास होते और आर्थिक विकास भी होते। राउर से आज बहुत अच्छा गोट बात हुई, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हो देखिए तो रहे संदेश और हम सुने आज कर किसान कर क्रम में श्री संजय कुमार बड़ा सुगर गुड़ बात करते रहें तो उमन गुड़ बात में ये ध्यान दें कि भाई रासायनिक उर्वरक कर अभी कर समय में देखिए हमन ला कम से कम प्रयोग करना है कहत रहें और जैविक खेती हमन जो आज कर समय कर जरूरत है उला करे पर किसान भैया बहनी मन ला कहत रहें और जरूरत है अभी हमन ला देखिए जैविक खेती कति लौटे कर काबर की जो रासायनिक उर्वरक में जो है हमन आश्रित रथन और ओकर से जो है उत्पादन जो है कम होते अब ये कही कि माटी कर क्षरण भी होता है तो ओकरे पर एक बड़ा सुघर योजना है जेकर नाम है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। खास करके रासायनिक उर्वरक निर्भरता ला घटाए कर ये पहल है और ये योजना कर उद्देश्य देखिए हमर किसान भैया बहनी हो रासायनिक जो उर्वरक है ओकर संतुलित उपयोग करना है संगे संगे जैविक और जो वैकल्पिक जो पोषक तत्व है उनका उपयोग ला बढ़ावा देना है। भारत सरकार हर देखी जो जोन तरह से हमारे अभी कर समय में रासायनिक जो उर्वरक बढ़ता है और ओकर से मिट्टी कर जो घटती क्षमता है ओकर बारे में और ओकर संग संग पर्यावरण समस्या ला ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है इला पहल करल गई से है और जेकर नाम है भाई प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। एक उद्देश्य कर अगर गोइट करी तो देखिए रासायनिक उर्वरक कर अत्यधिक उपयोग ला कम से कम करना है संगे संगे जैविक खाद प्राकृतिक खेती और वैकल्पिक जो पोषक तत्व है उला बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। माटी कर देखी गुणवत्ता ला बनाए रखे पर ओकर उर्वरता क्षमता ला बनाए रखे पर हमन ला ये ध्यान रखना पड़ी काबर कि अगर हमन इला जेटको हमन खेती करत है ना और माटी कर दशा बिगड़त है उमें जो गुणवत्ता है या उमें जो माटी कर क्षरण होता है तो निश्चित रूप से

फसल में प्रभाव पड़ही और हमन ला हानि होही। तो ध्यान रखना है माटी कर गुणवत्ता अच्छा रहे, उमें मतलब जैविक खेती खास करके गोबर खाद जरूर डाली। अभी कर समय है, खेत मन परिया है, तो कोशिश करी कि जो भी हमर जगह गोबर खाद है ओला खेत में छिड़काव कर दे। खेत में अगर छिड़काव कर देते तो हर बढ़िया जो है रसाय रही और जैसे ही बरखा हो ही और खेत कर जुताई करब तो बढ़िया जो है खेत हर मस्त ये कही कि एक तरह से संतुलित रही और खेती कर लागत भी कम करके किसान कर आय बढ़ाना एकर उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि कर प्रोत्साहन करना भी एकर उद्देश्य है। मैं कहते रहें कि भाई एक गीत और सुन लेते हैं, एक बात गोट बात ला करबो।

दोड़का तुरई कुआं बारी में बड़ा सुघरे दे लोक गीत जिला गाय रही प्रभुनाथ वैष्णव और उनकर संहिता मन। बाकी किसान भैया बहनी हो मैं जाते जा जवाती बता दूँ कि मंडी भाव कर सबसे पहले बात गेहूँ रही 2,428 रुपये प्रति क्विंटल, तिल कर गोट करी तो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो कर गोट करी तो 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, धान जो है 2,190 रुपये प्रति क्विंटल। संगे संगे मौसम कर जानकारी कर गोट करी तो आज न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री, अधिकतम जो है 39 डिग्री सेल्सियस रही और कल कर जो अनुमानित है 24.6 न्यूनतम रही और अधिकतम जो है 40.1 डिग्री रहकर संभावना है। और ध्यान दी अभी कर मौसम उतार चढ़ाव में कुछ भी भाई बरखा पानी भी कहीं कहीं छिटपुट हो कर संभावना है तो अपन फसल लगा ही वाला बढ़िया थोड़ा ध्यान दे के करी। बाकी देखिए अब बेरा हुए चली से है विदा लेकर तो चल जाए। राम राम, जय जोहार।

अभी ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश। लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में पहले गीत के लिए हमें फरमाइश की है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतारा सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवान ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शीपा, कपिल शीपा और पूजा परिहार ने। भुरसुंदा छत्तीसगढ़ से भगवानी सेन, संतोषी सेन, चिराग सेन और गजेंद्र सेन ने। शादुलसहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी ने। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू ने। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, अविष्कार, अनामिका और प्रणीता गायकवाड़ ने। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये ने। डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और बक्सर से राजस डी अंसारी ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला और विशाल ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल ने। मानपुर शाबित जिला मुरादाबाद से शेख जिया उल रहमान, शेख अता उल रहमान और शेख हबीबुर रहमान ने। मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर साह ने। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और शिखा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म इश्क का ये गीत। गीतकार हैं राहत इंदौरी और संगीतकार हैं अनु मलिक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और आपके साथ हूं मैं आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म जोश का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेड़ी से नानाजी लामसे, मीना लामसे, तेजस जयलामसे, हर्षिता लामसे ने। स्वरूप आनंद सरजाल जोड़ा पीपल अंबिकापुर से, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालान मराठावाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते ने। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। मुजफ्फरपुर बिहार से राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी।

मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी ने गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हासमी, समसुल कमर राही ने मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि और अनुराग दीप ने पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने जिला खरगोन सनावन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप ने, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने, फजल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी खेड़ा, शालिनी, तिवांशी, वाणी और आर बी खेड़ा साथी जीवन सिंह ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में आप सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म डॉन का ये गीत। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं कल्याण जी। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बुड़के, श्रीमती नंदा बुड़के, हनुमान बुड़के, अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े ने। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत ने। पनमर टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। चुरू राजस्थान से संदीप सोनगरा, सोमल और कार्तिक साथी प्राचीनी। अमरावती से साहिद भाई, आसिफ परवीन, अल्फिया परवीन, अल्फिया सादाफ सूफियान ने। ग्राम पंचायत खुंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार शाह, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा ने। माँ मतीन क्लब पचरा पोड़ी ऊपरोड़ा जिला कोरबा से ओम प्रकाश यादव, संतोष, तारा, सरोज, संध्या, साक्षी और गया प्रसाद यादव ने। दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, वनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा सबिया, अनस और रेहान ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

बढ़ते हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म जीत से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है कसेला पोस्ट सलका भैया थान सूरजपुर छत्तीसगढ़ से शेष कुमार सिंह ज्योति सिंह और सेजल सिंह ने। छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेरी से मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमानी। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला मनवर विशाल चेतन मनवर रोशनी मनवर प्रियांशी ने। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रिस्टो रोजी पर्ल और विलिस डिक्रिस्टो ने। साथ ही सरिता गम्हाड़कर प्रणीता सिद्धांत अर्जुन गम्हाड़कर और टुक टुक ने। इन्होंने अपना पता नहीं बताया है। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर प्रियंका ठाकुर दीपक खुशबू ज्योति ठाकुर ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। गांव खोखरावली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा विशाल विकास रोशनी और शगुन बारासा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें की है जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा और नरेश सिंह ने। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम ने। आमगासी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़ से मुनेश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी और दीपांशु ने। बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह ने। जनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत कुमार, रामानंद कुशवाहा ने। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का ने। सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा ने। रायगढ़ से रोहित और जयलक्ष्मी ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म दिल है तुम्हारा का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अगले गीत के लिए आप सभी श्रोताओं ने हमें फरमाइश की है। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव ने। धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी क्रिस्टी पटवा ने। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, शाहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोटा जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू ने। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वानिया सिंगरौल ने। रायपुर से विनोद वणलकर, वीणा और विविधा ने। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण जोहानुल हुदा ने। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया ने। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम और मनोज यादव ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडे शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा ने। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई और प्रीतेश संगई ने। ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना और रोनिका यादव ने। जबलपुर से अशोक सिंह ने। सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय, मोहन, खार, वन, मीनाक्षी, प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। मेहरनगर उमड़खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही ने। और नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जशवीर जस्सी, सीता और गीता। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहित चौहान और अलीशा चिन्नई की आवाज़ में फिल्म कृष 3 का ये गीत। गीतकार हैं समीर अंजान और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग

0: आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे के प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य

0: सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर

अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership.

0: Officials' advisory to prevent heat-related illnesses. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म जूली के इस गीत के साथ। किशोर कुमार की आवाज़ में गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आप सुनिए फिल्म अशोका का ये गीत अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

किशोर कुमार की गाई इस गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म यस बॉस का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं जतिन ललित। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू, कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बप्पू और डब्बू ने, अंदार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, बिमला सिंह, ग्राम पंचायत कौशलपुर भैसामुड़ा, रामानुजनगर श्री नगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल ने, मजनू कटिला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, अनारकली, बिजराव, जगराव, पंजाब से, साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी ने, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देवी तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अलकबीर ने, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अलमास बानू पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगरांडे, साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार ने, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लंघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगला मेल हमें भेजा है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद और पोपोरानी ने। चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि और आर्यन ने। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग ने। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव बघेरा दुर्ग से। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। ग्राम पीपल रोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता ने। अकोला से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कुमार कामले ने। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डुकेश साहू रशेड़ा छत्तीसगढ़ से। मेन बाजार कुंडलीवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर ने। मेन रोड तेलारा से प्रकाश पोहराकर, नर्मदा और कुमारी सुजाता पोहराकर ने। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति। ग्राम चरौदा बाजार नावापारा, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से डॉक्टर वनीता नायडू, डॉक्टर कृष्णा राव नायडू, डॉक्टर ईश्वर राव नायडू, डी रोजा, पुष्पा, लक्ष्मी। धर्मपुरा बस्तर छत्तीसगढ़ से फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजियाना नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, शबीहा मुजावर, मिखाइल जुनेद मुजावर। छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, सोहम, प्रांजलि, अंशुमन, ओवी, सदानंद, सुभाष, नीरज, विराज, योगिता, सुवर्णा। एयरपोर्ट रोड छत्रपति संभाजी नगर से प्राजक्ता दत्त प्रसाद ने। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत और बाबू भाई ने। बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाणे, भारती रंभाणे, जानवी वैष्णवी और हर्षल रंभाणे ने। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार माखीजा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म 1950

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश

पेश की है। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आदेश कुमार काले ने। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई और प्रीतेश संगई ने। धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू ने। नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत, पुष्पांजलि वर्मा, नावागढ़ कटई से। बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रियंबिका, लीना और आशुतोष अंगारे ने। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा ने। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, गिरडी झारखंड से। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल ने। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वानिया सिंगरौल ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज़ में फिल्म सैनिक का ये गीत। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है राजकोट से प्रवीण सोनी, पूजा, पायल, कंचन, कुसुम, कलावती, जूली और जगदीश जौहरी ने। बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली ने। संजय कुमार साहू पोटिया कला दुर्ग से। हरजिंदर शिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता गांव नथाना पंजाब से। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े ने। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति ने। मामूलीवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तांडे, बसंतराव भोसनी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल ने। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल ने। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष ने। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी ने और जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े ने। महेंद्र मोदी रामघाट कैंट से। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म सोल्जर का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

फिल्म सोल्जर के इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज आज यहीं तक। उम्मीद है कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो साथी जयमाला को दीजिए इजाजत, नमस्कार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी वादन, राग है मालकोस।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी, जिसमें आज आपने सुना उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी वादन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30

मिनट हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम में हमें गीत के लिए फरमाइश की है बरेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमनी, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सबासेर ने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश नेभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी और हनी ने। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू और वंदना श्रीवास्तव ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म मन का ये गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

कार्यक्रम मन भवन में अब सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म जब वी मेट का ये गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं प्रीतम। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर ने। नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणि, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत, शौर्य, कुमारी सानवी, चिरमिरी रोड, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में फिल्म आशिकी का ये गीत। गीतकार है रानी मलिक और संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर, राही सरिता गम्हाड़कर, सिद्धांत गम्हाड़कर, प्रिंस एकांश गम्हाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गम्हाड़कर, वैशाली गम्हाड़कर, श्वेता सुमित गम्हाड़कर, कुमारी ध्वनि गम्हाड़कर परी ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम मन भावन में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लवी से गुलाब दास मानिकपुरी और लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म फूल और कांटे का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

पेश है कार्यक्रम मनभावन का ये आखिरी नगमा, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म ओम शांति ओम से। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद शादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौण और मोहम्मद शादाब खत्री ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन भावन आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर

0: जलवायु लचीलापन समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।